0: श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में सुन रहे थे राग नट भैरव में गरुण मिश्रा का गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, JRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, आप समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके

0: इनके नाम से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा है। इनके बचपन का नाम मिथिलाधीप नंद शरण था। जब इन्हें विद्यालय में दाखिले के लिए ले जाया गया तो विद्यालय के रजिस्टर में इनका बड़ा नाम आ नहीं रहा था, तो अध्यापक ने इनका नाम मैथिली शरण कर दिया। क्योंकि इनका जन्म धनाढ्य वैश्य परिवार में हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ गुप्त जुड़ गया और इस तरह इनका नाम मैथिली शरण गुप्त हो गया। गुप्त जी इतने प्रतिभाशाली थे कि बचपन में स्वर्णलता के नाम से छप्पे लिखते थे। गुप्त जी को मुंशी अजमेरी से मार्गदर्शन मिला। 12 वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा में कनकलता के नाम से पहली कविता लिखी। आगे चलकर रसिकेश और रसी केंद्र आदि के नाम से भी लिखा। अनुवाद कार्य करने के लिए इन्होंने मधुप नाम अपनाया तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कविताएं लिखने के लिए भारतीय और नित्यानंद हो गए। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। दोनों के बीच परस्पर स्नेह और सम्मान का रिश्ता था। द्विवेदी जी के लिए एक जगह गुप्त जी लिखते हैं, अयोग्य देखकर भी पंडित जी ने मुझे त्यागा नहीं, सदा के लिए अपना लिया। मुझे बोलचाल की भाषा में पद्य रचने का गुरु मिल गया। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि परलोक में उन सा पथ प्रदर्शक मुझे प्राप्त हो। एक किस्सा उनका भारत भारती के प्रकाशन के समय का है। इसके प्रकाशित होते ही इसका न केवल भरपूर स्वागत हुआ बल्कि इसकी धूम भी मच गई थी। इसके प्रकाशन के समय जब गुप्त जी ने द्विवेदी जी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आजकल ऐसी पुस्तकें लिखने पर शासकों से लेखक की रक्षा कौन करेगा। राजा रामपाल सिंह के आश्वासन देने के बाद इसमें कुछ मूल पदों में परिवर्तन किए गए जो अंग्रेजी शासन की दृष्टि से आपत्तिजनक हो सकते थे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीयता के भाव के कवि थे, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के पैरोकार थे, लेकिन अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता के पुरजोर विरोधी थे। एक तरफ उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति पर किसान की कविता में खुलकर लिखा है तो दूसरी तरफ युवाओं में राष्ट्रीयता के भावों को जागृत करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वे प्रेरित करते रहे। गुप्त जी नारी सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील और जागरूक थे। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय नारियों को विशेष स्थान दिया। इनमें केकई, उर्मिला और यशोधरा विशेष रूप से शामिल हैं। एक तरफ गुप्त जी नारी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले गुप्त जी ने अपने लेखकीय दायित्व के साथ साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को भी बखूबी निभाया। उन्होंने अपने पिता के दिए इस आशीर्वाद को कि तू आगे चलकर हमसे हजार गुना अच्छी कविता करेगा चरितार्थ किया। यह आशीर्वाद उनके पिताजी ने गुप्त जी के बचपन में उनके एक छंद को पढ़कर दिया था।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आपने सुना मैथिली शरण गुप्त के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड भाग 48।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती।

सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संस्कृत हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत् यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते।

0: तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकटितदृष्टये आगामिसहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणमयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे प्रधानमन्त्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्ससमूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेषबलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विकसङ्क्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्तिशृङ्खला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्परसम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि सङ्कटः केवलम् एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन अष्टादश ब्रिक्सशिखरसम्मेलनेन बहवः मूर्तविकासोन्मुखपरिणामाः सञ्जाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्सशिखरसम्मेलने उच्चस्तरीयद्विपक्षीयवार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमन्त्रिणा विविधदेशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रियसंस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्तमन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26+ हिन्दीदिवसस्य अथ च 6 अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढ़े, पंजाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 270 पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का नई दिल्ली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों का दर्शाने वाला वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम,

0: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। यमन की सेना ने लाल सागर के तट के पास ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। और क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, "Through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across."
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य

0: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
1: प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बना

आती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पद बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी 7वीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल
आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद

0: को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुरभि शर्मा द्वारा गाए भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे सितार पर खालिद मुस्तफा, हारमोनियम पर संगत दी है दामोदर लाल घोष ने और तबले पर शिवित भारद्वाज।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आपने सुना सुरभि शर्मा द्वारा गाए भजन। सहयोगी कलाकार थे सितार पर खालिद मुस्तफा, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और तबले पर थे शिवित भारद्वाज। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार आप सभी को, मेरा आपकी दोस्त आरती गौड़ का और आप सभी के अपने कार्यक्रम में नाम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज हवाओं में एक अलग ही मस्ती है, फिजाओं

में सिंदूरी सा रंग है और हर दिल की धड़कन में बस एक ही नाम गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, देवा श्री गणेशा।

दोस्तों, गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है, ये सच में हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है और इसका हम करते हैं पूरे साल इंतजार। विघ्नहर्ता संकट मोचन हमारे अपने प्यारे गजानन हमारे घर आते हैं और हम सबके सारे दुख हर लेते हैं। गलियों में गूंजते हैं ढोल ताशे, घरों में मोदक की सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है और बच्चों की खिलखिलाहट होती है, खूब मस्ती होती है और सबसे बड़ी चीज़, एक अपने आप में ही ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, खुशी सी महसूस होने लगती है आज के दिन। तो चलिए हम भी आपको थोड़ी सी और खुशी देते हैं और एक सुनते हैं एक और शानदार धुन जो आपके दिन को बना देगी और खास।

दोस्तों, गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व वैसे तो ज़्यादातर मनाया जो जाता है वो जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ पर मेहमान बनकर आए थे दक्षिण भारत में। और ये जो गणेश चतुर्थी का जो शुभ अवसर है, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं। लेकिन चलिए एक बात मैं भी आपको बताती हूँ कि मुख्य रूप से ये मनाया जाता है भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में। इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इसे मनाने के जो और भी वजह है वो कुछ ऐसी है कि अगर पौराणिक कथाओं की तरफ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिन माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी की रचना की थी और उन्हें प्राण दिए थे, और इसीलिए उनके इस दिवस को, जन्मोत्सव को, जन्मदिन को इस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है और वो प्रथम पूज्य भगवान भी कहलाते हैं।

दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी सभी संकटों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, विवाह हो या घर में कुछ भी शुभ कार्य हो, तो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ये शुभ माना जाता है ताकि मार्ग में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आज का भारत है, इसमें इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उत्सव मनाने का श्रेय जो जाता है वो है स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, इनको जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों को एकजुट करने के लिए, उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए एक सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और वहाँ से ये जो पहल शुरू हुई वो आज लोगों के दिलों तक पहुँच चुकी है। एक वक्त में एक लिमिटेड एरिया में मनाए जाने वाला ये फेस्टिवल आज घर घर में पूजा जाने लगा। घर घर में गणेश जी की जो जन्मदिन है, जो आज का दिन है, वो बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ मनाया जाता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी की मिट्टी चाहे कितनी भी कच्ची और खुरदुरी क्यों ना हो, जब आस्था का हुनर और अपनों का साथ मिल जाए तो हर मूर्ति जो होती है उसमें प्राण और हर जीवन में नया सवेरा आ जाता है। और जो हमारे भगवान गणेश हैं वो भी यही कहते हैं कि अपनों का साथ हमेशा रखिए और भगवान पर विश्वास भी रखिए। बल बुद्धि के वो ज्ञाता हैं, दाता हैं, और उनकी कृपा से हम सब खुश रह सकते हैं। तो आप पर भी उनकी ये जो कृपा है वो बरसती रहे, और आप सब भी इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, अपनों के साथ रहें और भगवान पे आस्था रखें। यकीन मानिए, आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम का नाम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, लेकिन आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इन 10 दिनों में बहुत ही अच्छे से बप्पा को खुश कीजिए। देखना बप्पा भी आपके आप पे खुश होकर आपके ऊपर कृपा बरसाकर चले ही जाएंगे। चलिए मैं चलती हूँ, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को

0: सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र

0: करते हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
3: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
4: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23-31-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्ता ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Bomma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the group

0: नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर सभी ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। दो रोजा सरबराह मीटिंग के अहम लम्हों की झलकियों पर मुश्तमिल एक वीडियो वजीर आजम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में वजीर आजम की सरबराह मीटिंग की तकरीर के एक हिस्से को दिखाया गया है, जहां उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने दोस्ती, शराकतदारी और तमाम तर शोबों में तावुन में पेशरफ्त की है।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: जिन रहनुमाओं ने सरबराह मीटिंग में शिरकत की, उनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान, अबू धाबी के वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल हैं। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन होंग, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, युगांडा की नायब सदर जैसिका अलूपो और दीगर शख्सियतों ने भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत की। भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इसमें 11 रुकन मुल्कों और ग्रुप के 10 हिस्सेदार मुल्कों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा कुछ बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने भी शिरकत की। जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग से अलग पिछले तीन दिन के दौरान सरबराह ने ममलकत व हुकूमत के साथ 15 दो तरफा मीटिंग्स का भी इनेकाद किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए हुकूमतें 2029 से पहले यकसां सिविल कोड यूसीसी नाफिज करेंगी। मुंबई में नामा निगारों से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि कई रियासतों में यूसीसी लागू कर दिया गया है और उन्हें पूरा एतमाद है कि इसे बीजेपी एनडीए के इक्तदार वाली 21 रियासतों में 2029 से पहले नाफिज कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: जनाब शाह ने कहा कि एक साथ तीन तलाक के मामले को खत्म करके मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक फराहम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भारतीय न्याय संहिता के जरिए मुल्क के फौजदारी अदलिया निजाम को मजबूत बनाया है। उन्होंने दावा किया कि बहुत सी रियासतों में महज एक साल की मुद्दत के दौरान मुजरिमों को सजा दिए जाने की शरह में 30% इजाफा हुआ है। वजीर दाखिला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इंसाफ 3 साल के अंदर अंदर फराहम किया जा सकता है, एक निजाम कायम किया जा रहा है। जनाब शाह ने कौमी सलामती के बारे में कहा कि दफा 370 और 35A को खून की एक बूंद बहाए बगैर या महज एक गोली दागे बगैर खत्म कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह मरबूत है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की पैदाइश के दिन के मौके पर मनाया जाता है, जो अक्लमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। ये 10 रोजा त्यौहार लोगों के अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां सजाने और उनकी पूजा करने से शुरू होता है, जिसका इख्तिताम गणेश विसर्जन की तकरीबात के साथ होता है, जब अलग अलग जगहों पर जलसों के दौरान इन मूर्तियों को दरियाओं, झीलों या समंदरों में नजरे आब किया जाता है। इस मौके पर दुआएं की जाती हैं, भजन गाए जाते हैं और गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगाए जाते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र में शानदार तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। पूरे मुंबई में गणेश मंगल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। पूरे मुंबई में गणेश मंडल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, जिससे इस त्यौहार के जोशो खरोश में मजीद इजाफा होता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लाल बख्शा राजा का दौरा करेंगे। लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुणे में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस त्यौहार को अवामी सतह पर मनाने की बुनियाद रखी थी, तभी से यहां गणेश उत्सव सामाजिक यकजहती और अवामी बेदारी की अलामत बन गया है। इस त्यौहार में 5 तरह के गणपति, कस्बा गणपति, तांबड़ी, जोगेश्वरी, गुरुजी, तलीम, तुलसी बाग और केसरीवाड़ा बड़ी

0: तवज्जो का मरकज होते हैं। पुणे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने इस मौके पर लोगों के हुजूम की देखभाल, ट्रैफिक के बंदोबस्त, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जाएगा, खवातीन कजरी तीज भी मनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रियासत में कई मकामात पर छोटे बड़े पिंडाल सजाए जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ के झूले लाल वाटिका में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ शुरू होने वाला है। उत्सव का पिंडाल कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। इस दौरान मशरकी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज त्योहार भी मनाया जा रहा है। इस दिन शादीशुदा खवातीन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस मौके पर श्रावस्ती जिले में विभूतिनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जल अभिषेक करेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों की जिंदगी में इल्म, पुरुमीदी, अमन, खुशी और खुशहाली लेकर आता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने दुआ की कि यह पवित्र त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई तवानाई और नया जोश लाए और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी की कोशिशें कामयाब हों और मुल्क मुसलसल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइनसाज असेंबली ने मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर देवनागरी रस्मुलखत में लिखी हिंदी को मंजूरी दी थी। आज हिंदी दुनिया में वसी पैमाने पर बोली जाने वाली जबानों में शामिल है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली जबान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 के प्रोग्राम और छठे ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन में, जो सरकारी जबान से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस होती है, शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये 2 रोजा ऑल इंडिया सरकारी जबान कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई में मुनाकिद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत दाखिला का सरकारी जबान का महकमा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदी और महाराष्ट्र की मालामाल लसानी, सकाफती और अदबी रिवायात के दरमियान ताल्लुक को उजागर करना है। आज इफ्तिताही जलसे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति अवार्ड पेश करेंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस की खास बात कौमी गीत वंदे मातरम पर मरकूज बातचीत होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़राए आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, पार्लियामेंट के बहुत से अरकान, दानिश्वरान, माहिरीन अदब, माहिरीन तालीम और सीनियर अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज हिंदी दिवस के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि अदब और सहाफत से लेकर सिनेमा, टेलीविजन, तालीम और डिजिटल दुनिया तक हिंदी लाखों अवाम के इजहार का एक ताकतवर वसीला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने भारत के एतमाद, फख्र और आलमी दर्जे को शिनाख्त की है और ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को नई नस्ल से वाबस्ता करें और इसमें नई टेक्नोलॉजीज और नए मौकों का इजाफा करें। भारत ने कल ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज MT गाइया पर किए गए हमले की मजम्मत की है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि अभी तक भारतीय अमले के 13 अरकान को बचाया गया है और एक लापता भारतीय शहरी की तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। सिफारतखाने ने बताया कि वो सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ रबते में है। सिफारतखाने ने भारतीय बाशिंदों को बचाने में ओमान के हुक्काम की तरफ से मदद किए जाने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। भारत ने खित्ते में अमन बहाल करने के लिए कशीदगी फौरी तौर पर खत्म करने और मुजाकिरात और जमहूरियत कायम करने की अपनी अपील को दोहराया है। आला दर्जे के भारतीय रिकर्व तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको के साल्टिलो में वर्ल्ड कप फाइनल में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी है। वो ऐसे पहले भारतीय रिकर्व तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने इस इवेंट में सोने का मेडल हासिल किया है। धीरज ने जापान के नाकानिशी को सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त दी। 25 साल के आर्मी तीरंदाज 2023 और 2024 के एडिशन में कोई तमगा हासिल नहीं कर सके थे। उनकी इस जीत से मर्द रिकर्व जुमरे में तमगा जीतने का 16 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। जयंत तुलुकदार आखिरी भारतीय रिकर्व तीरंदाज थे जिन्होंने 2010 में एडिनबरा में कांसे का तमगा जीता।

0: इनकी T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में एक टीम के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और सभी मैच जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजीम जज्बे का वसीला हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए T20 बैन अल-अक्वामी मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 156 रन पर ऑल आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला उमर जई और मोहम्मद नबी ने मिलकर 83 रन बनाए। भारत ने हदफ का ताकुब करते हुए 13 ओवर्स और 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया कौनिन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की सरबराही में ब्रिक्स इजलास के इख्तिताम पजीर होने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स हमारे मुश्तरक मामलात के हल का एक इको निज़ाम है और दुनिया हमसे ठोस नतज की तवक्को रखती है। रोजनामा प्रताप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स की बाहमी तिजारत 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जवाहरात और जेवरात की सनत के 52वें एवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के हाथों में रहनी चाहिए।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर ब्रिक्स रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए हुकूमतें 2029 से पहले यकसा सिविल कोड लागू कर देंगी। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई कॉन्फ्रेंस के दौरान 2025-26 के राजभाषा अवार्ड पेश किए जाएंगे। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। भारतीय हमले के 13 अरकान को बचा लिया गया है। धीरज बोमदेवारा ने मर्दों की पहली रिकर्व तीरंदाजी में तारीख रकम की है। उन्होंने मैक्सिको में आलमी कप के फाइनल में सोने का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर खवातीन का रिकॉर्ड 8वां एशिया कप जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक द्वारा गाया राग ललित।
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

Tiana.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक को। राग था ललित। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: ने दूजियां भाषावां दे कई शब्द भी ग्रहण कर ले ने, इसलिए हिंदी व्यापार, तकनीक, विज्ञान, संचार ते रोजमर्रा दे वातावरण च फल फुल रही है ते पीढ़ियां नूं आपस च जोड़ रही है। हिंदी ने पुराने ग्रंथां, परंपरावां ते ज्ञान नूं संरक्षण करन च खास भूमिका निभाई है। साहित्य, कला, सभ्याचार, नाटक, फिल्मां च गलबात दी ए भाषा अपनी प्रतिभा विखाउंदी है। हिंदी दिवस साडा सभ्याचारक ते भाषाई विरासत दा त्योहार कहा जा सकता है, जिहड़ा हिंदी दे संरक्षण ते आउण वालियां पीढ़ियां नूं इस दी वरतों करन लई हल्लाशेरी दिंदा है। 14 सितंबर नूं असीं भारत च हिंदी दिवस मनाउंदे हां ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इस नूं हर साल 10 जनवरी नूं मनाया जांदा है, ताकि हिंदी नूं विश्व भाषा दे तौर ते वधावा दित्ता जा सके। असीं भारती हां, साडी राष्ट्र भाषा हिंदी है, जिस ते सानूं माण है। तुहानूं सारिआं नूं हिंदी दिवस दीआं शुभकामनावां। ते हुण असीं तुहानूं सुणवा रहे हां इक वार्ता, चंगे भविख लई चंगीआं आदतां। वार्ताकार ने सरबजीत सिंह।
1: चंगेरे भविख लई चंगीआं आदतां। सत श्री अकाल प्यारे स्रोतियो, तुसी सुन रहे हो अपना मनपसंद रेडियो प्रोग्राम अते मैं हाँ तुहाडा मेजबान। अज मैं तुहाडे नाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अते साडे जीवन नाल सीधा जुड़े हुए विषय बारे सांझ पाउण जा रहा हाँ। स्रोतियो, की तुसी कदे सोचिया है कि साडा भविख किहो जिहा होएगा? की असी कामयाब होवांगे? की साडी सेहत चंगी रहेगी? की असी अपने सुपने पूरे कर सकांगे? कि असीं अपने परिवार अते समाज लई कुछ चंगा कर सकांगे? इन्हां सारे सवालां दा जवाब काफ़ी हद तक साडियां अज दीआं आदतां विच छुपिया होया है। इस लई अज दी साडी वार्ता दा विशा है, चंगेरे भविख लई चंगीआं आदतां। प्यारे स्रोतियो, एक बहुत सोहणी गल कही जांदी है, असीं पहलां अपनीआं आदतां बणाउंदे हाँ, फिर साडी आदतां सानूं बणाउंदियां हन। साडा हर रोज़ दा जीवन छोटियां छोटियां गल्लां नाल बनता है। सवेरे कदों उठते हाँ, की खाते हाँ, किन्ना पढ़ते हाँ, किन्ना समा मोबाइल से लाने हाँ, किस तरह के लोगों नाल मिलते हाँ, अपना काम समय सिर करते हाँ या नहीं, ये सारी गल्लां मिल के साड़ी शख्सियत बनाउंदियां हन। इसलिए जे असी अपना आने वाला कल सुंदर बनाना चाहते हाँ तो सानू अज तो ही अपनियां आदतों वल ध्यान देना पवेगा। पहली आदत, सवेरे समय सिर उठना। स्रोतियो, चंगे दिन की शुरुआत चंगी सवेर तो हुंदी है। सवेरे समय सिर उठन वाले व्यक्ति कोल अपने दिन नूं सुचेजे ढंग नाल शुरू करन लई वधेरे समा हुंदा है। वह आराम नाल तैयार हो सकता है, कसरत जा सैर कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है अते दिन दे कम्मां दी योजना बना सकता है। इस दे उल्ट जे असी देर तक सौंदे रहिए तां सारा दिन जल्दबाजी विच लंघ सकता है। इस लई अज तो एक छोटा जिहा फैसला करिए, मैं अपनी सवेर नूं अपनी ताकत बनावांगा, कमजोरी नहीं। दूजी आदत, समय दी कदर। प्यारे स्रोतियो, पैसा गवा के दोबारा कमाया जा सकता है, पर बीतिया होया समा कदे वापस नहीं आउंदा। असी अक्सर कहिंदे हाँ कल कर लवांगे, पर इह कल कदों अज बन जाता है अते कदों साल लंघ जाते हैं पता ही नहीं लगता। विद्यार्थी कहता है कल तो पढ़ांगा, नौजवान कहता है कल तो मेहनत करांगा, कोई कहता है कल तो कसरत करांगा, पर स्रोतियो सफल लोग कल दी उड़ीक नहीं करते, वह कहते हैं जो करना है अज तो शुरू करना है। इसलिए अपने दिन का एक छोटा जिहा समा सारनी बनाओ, जरूरी काम पहला करो अते मनोरंजन बाद विच। तीजी आदत, हर रोज़ कुछ पढ़ना। किताबां साडियां अजिहियां दोस्त हन जो बिना किसी स्वार्थ दे सानू ज्ञान दिंदियां हन। अज मोबाइल अते इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करन बहुत आसान कर दित्ती है, पर इस दे नाल भी जरूरी है कि असी सिर्फ छोटियां छोटियां पोस्टां जा वीडियोज़ तक ही सीमित ना रहिए। चंगी किताब सानू डूंगाई नाल सोचना सिखाउंदी है। तुसी हर रोज़ सिर्फ 15 या 20 मिनट पढ़न नाल शुरुआत कर सकते हो। कोई जीवनी पढ़ो, कोई इतिहास दी किताब पढ़ो, कोई साहित्यक रचना पढ़ो, जां अपने विषय नाल संबंधित कुछ नवा सीखो। चौथी आदत, सेहत नूं पहल देना। स्रोतियो, साडे कोल

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता UCC लागू करेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह

0: आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
1: कदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि।
2: गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे के भव्य और ऐतिहासिक गणेशोत्सव का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य 5 गणपति सहित विभिन्न गणेश मंडलों की आकर्षक सजावट, ढोल ताशों की गूंज और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगले 10 दिन तक पुणे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल रहेगा। इस वर्ष कई गणेश मंडलों की ओर से सामाजिक संदेश और जन जागरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का नियोजन किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
1: गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि।
0: क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीबी राधा कृष्णन ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown, where he said, "Through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across."
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
0: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड दैट बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट्स इन 21 स्टेट्स विल इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिफोर 2029। Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA rule states before 2029.
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
3: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इम्प्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2029। द भारतीय न्याय संहिता विच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मैनी स्टेट्स द कन्विक्शन रेट हैज सीन अ 30% इंक्रीज इन जस्ट अ सिंगल ईयर अ सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड वेयर जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड विद
2: और तीन साल में न्याय मिल जाए ऐसी एक प्रणाली खड़ी हो रही है।
0: द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे अक्रॉस द कंट्री विद ग्रेट डिवोशन। द डे मार्क्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश हु इज अ सिंबल ऑफ विजडम प्रोस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून। द डे मार्क्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश हु इज अ सिंबल ऑफ विजडम प्रोस्पेरिटी Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आपकी पसंद।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत भी आपने सुना। इस गाने को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे दिल की सारी शिकायतें थम गई हैं और चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वाकई में कुछ गाने होते ही बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद, और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। जी हाँ, यह आपका भी कार्यक्रम है जिसमें कि आप हमसे जुड़ते हैं मैसेजेस के जरिए, जो कि आप भेजते हो हमें ईमेल के जरिए। जी हाँ, तो बिल्कुल स्वागत है, नमस्कार आप सभी को। हमारा बिल्कुल प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हमारे श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा चुके हैं। पर कोई श्रोता जो और भी है जो नए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, IPRADIODELHI@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। बिल्कुल हमें जल्दी से मेल करिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। और वैसे भी ना, पता है अभी ये गाना सुन रही थी तो मैं सोच रही थी इसमें हम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बहुत ही अच्छा सा सुकून भरा गाना था ये। और कभी कभी तो क्या होता है कि हम इतने खुश होते हैं कि हम ना यूँ खिलखिला जाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और सामने वाला सोचता है पागल हो गए हैं ये, पागल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब सोचते हैं, क्या पता नहीं भी सोचते हैं, पर इतना हंसते हैं ना कि कभी कभी कोई सिचुएशन जीवन में सभी के आती है कि खिलखिला के अगर नहीं भी हंसने का मूड है तो भी हंस रहे होते हैं। जी हाँ, वो हंसी जो सीधे दिल से निकलती है, वो कंजूसी से नहीं बल्कि दिल खोलकर बिना किसी वजह से पेट पकड़कर हंसी जाती है।

और मैं सोच रही हूँ कि उसी के बहाने ढूंढेंगे, हमारे जो श्रोता है ना वो भी हमें बता सकते हैं कि उन्हें ऐसा कभी कोई मोमेंट आया है, जैसे कि किसी बहुत ही गंभीर जगह पर, जैसे कि क्लासरूम में या कभी ऑफिस मीटिंग में या किसी बेहद शांत जगह पर जहाँ आपको जोर की खिलखिलाती हुई हंसी आ गई और आपने उसे रोकने की नाकाम कोशिश की हो। वो मज़ेदार किस्सा क्या था वो आप हमें शेयर कर सकते हो, क्योंकि होता है कभी कभी ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसी हंसी आती है क्योंकि कहना नहीं। क्योंकि एक बार मुझे खुद याद है कि मैं किसी के साथ शो कर रही थी, तो मैं साथ में थी तो वो इतना ज़ोर से हंसने लगी, मैंने गाना ब्रेक किया और उसके बाद मैंने कहा तुम बाहर जाओ। तो ऐसा कभी मौके आ ही जाते हैं कि आप हंसते हो, खिलखिला के हंसते हो, बल्कि हूँ जोक नहीं सुना पाते बल्कि एकदम जोर जोर से। और कभी कभी तो हम रील देखते हैं तब भी ऐसे हंस रहे होते हैं, तो ये ऐसी जो मुस्कुराहटें होती हैं, ऐसे जो खिलखिला के हंसना होता है, ये बहुत अच्छा होता है और ये मौके कभी कभी आते हैं। तो ज़रूर हमें भेजिएगा कि आपने ऐसा कब महसूस किया और कब आप ऐसे खिलखिला के हंसे जबकि कोई गंभीर था और वाकई में सबको मज़ा आ गया। तो चलिए मैसेजेस और मेल की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि गीत हमारी जो ये भेजा था ये ज़ुबैदा फिल्म का, तो ये किस किसने सुनना चाहा है तो वो बता देते हैं। ये हमें आया है मैसेज इस गीत के लिए, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का। और इनके साथ कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। और अगला जो हमें संदेश आया है वो है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ जुड़े हुए महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये लिखते हैं माय रेडियो माय लाइफ। वाह दोस्तों क्या बात है आपकी, तो बात ही क्या कहें कि श्रोता इतने दिल से जुड़े होते हैं कि उनके विचार, उनकी जो बातें भी लिखते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये है आया है हमें पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह की ओर से। और ये हमारे साथ जुड़े हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया जी। और गांव नथाना पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं रजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और ये हैं हमारे साथ उमाली महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं अनुप कुमार, उद्धव पाटिल। और पलसी सिंह के साथ हैं विजय शेगुकार और ऋषिकेश शेगुकार जी। अगला संदेश हमें आया है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश राजवर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का। और इनके साथ जुड़े हुए हैं इसी मैसेज में इन्होंने लिखा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकर जी। और ये संदेश हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का। ये लिखते हैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री गणेश जी की असीम कृपा सब पर बरसती रहे। तो सब आप सभी को भी इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और अगला संदेश हमें आया है उत्तम कुमार, उत्तम नगर दिल्ली से आया है ये संदेश, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आज आपके साथ शोभा शर्मा, और मेरे साथ एक और रेडियो सखी आपके साथ ही है। बिल्कुल, मैंने कहा कि साथ में हम प्रोग्राम करते हैं, कुछ तो बातें करें वो भी और हम भी, वो भी जुड़े, तो वो हैं। जी हाँ, बताइए अपना नाम।
4: मैं हूँ आप सबकी दोस्त और सबसे खास शोभा की दोस्त आरती गौड़। और सच में शोभा ने जो आज का टॉपिक लिया है ना, वो सुनने के बाद मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि बातें करना

0: हंसना मुस्कुराना ये किसको पसंद नहीं होता, हर किसी की ये चाहत होती है और हर किसी की ये आदत होती है, और नहीं है तो बना लीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि टेंशन और ये जो कहे ना, जीवन में हापा धापी सबके लगी हुई है, पर मुस्कुराएंगे, खिले खिला के हंसेंगे ना, तो एक तरह से टेंशन छू मंतर हो जाएगी।
0: जी
1: और
0: हाँ, कभी कभी छोटी छोटी सी बातों पे ऐसे हंसी आ जाती है कि जैसे पता नहीं क्या पेट दर्द होने लगता है, उस लेवल तक हम हंसते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे जो एक श्रोता जुड़े हुए हैं ना, जो हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है
0: शोभा
1: हंसकने
0: जी
1: में।
0: आपके नाम है?
1: ओके कोई नहीं, बाप आरती जी आपका भी नाम आएगा, आप अभी जुड़े हैं ना इसीलिए। तो ये मैसेज हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार का। ये लिखते हैं कि इन्हें गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लिखते हैं हंसते मुस्कुराते जीवन बिताना चाहिए, बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं दोस्त। जानकारी तो आप भी दे रहे हो कि हंसते मुस्कुराते जीवन बिताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है, और कोई तरीके में तो आप दुखी रहोगे, उदास रहोगे।
0: जी हाँ, तो आपने अच्छी बात कही, हमने अच्छी बात की, अब आगे बढ़ते हैं अच्छे एक और मेल की तरफ। यह है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, ये इन्होंने बहुत ही प्यारा सा संदेश भेजा है, और भेजने वाले हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। और ये कहते हैं कि भाई, इनका कहना है कि शायद कुछ लोगों के मैसेज तो बार बार लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके नहीं लिए जा रहे। भाई आप ध्यान से प्रोग्राम को सुनिए, हर बार कोशिश यही रहती है कि सबके मैसेज लिए जाएं।
1: बिल्कुल, मुल्लापुरा दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, जी संजीव जैन, हमने
0: जी
1: दोबारा
0: हाँ,
1: से आपके नाम पढ़
0: जी हाँ। अब इसके बाद अगर आपकी
1: दिया
0: शिकायत आई तो इसका मतलब आप कार्यक्रम नहीं
1: नहीं
0: सुन
1: सुन
0: रहे हैं।
1: रहे हैं।
0: अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी हमारे साथ जुड़े हैं, आगे जुड़े हैं।
1: और हमारे साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी जुड़े हुए हैं, और इन्होंने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो दोस्त आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है दादरी गेट भिवानी से, कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी का।
0: जी हाँ, तो बहुत सारे संदेश हो गए हैं, अब एक मुस्कुराता सा गीत हो जाए।
1: बिल्कुल, झूम जाएंगे हम तो।

0: तो भाई दोस्तों, इस गाने के बाद हम भी लुटपुट से गए हैं।
1: भाई मैं
0: और
1: तो लुट गई, मैं यहाँ ही लुट गई
0: सीरियसली मैं
1: हूँ
0: डांस करने लग गई थी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि आप सब भी इसके साथ झूमने तो लगे ही होंगे।
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल संदेश की तरफ बढ़ते हैं। ये है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। कहते हैं कुछ यादें किताबों में नहीं, दिल में लिखी होती हैं। कुछ हंसी ऐसी होती है जो आज भी चेहरे पर खिली होती है। वो पल याद आते ही हम फिर से जोर से हंस पड़ते हैं, क्योंकि कुछ किस्से जिंदगी में सिर्फ सुनाए नहीं जाते, बार बार जिए जाते हैं। वाह क्या
1: वाह
0: बात है।
1: सच में यार, दिल को छू गई ये
0: और
1: बात।
0: कहते हैं कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि याद आते ही हमें फिर से वही बेफिक्र इंसान बना देती है।
1: और दोस्त यही जिंदगी है, क्योंकि वो यादें जो हमें बिल्कुल कह रहे हैं ना, बेफिक्र इंसान बना देती है। बेफिक्री है ना, बहुत मुश्किल से नसीब में मिलती है।
0: अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना शोभा, कि मान लीजिए इस वक्त आप टेंशन में हैं किसी चीज को लेके, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद आप इसी वक्त पे हंस रही होंगी कि यार क्या फालतू की चीज ले
1: हाँ
0: गए इसके।
1: मतलब कुछ भी नहीं था और हम लोग उसको इतना बड़ा इशू बना लेते हैं।
0: जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संदेश है,
1: ये संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से। ये है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से।
0: इसके साथ ही अगला जो संदेश है वो है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और ये हैं किरण ठाकुर। ये भी दुआ कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो भाई हमारी तरफ से भी आपको राम राम।
1: और अगला संदेश हमें आया है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कागड़ा, पवित बोट, बबीता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी बोट का।
0: साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रेशु गोयल और रोहिणी, दिल्ली से ये जुड़े हुए हैं।
1: और अगला संदेश हमें आया है एसएम जावेद का, शगुफ्ता और अंजुम का, गुमला झारखंड से।
0: जी हाँ, तो आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया करते हुए हमारे साथ शामिल हो गए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से, पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, मलकापुर महाराज से, नारायण इंगले, सोपान तंपड़े और आशीष मुनेकर। तो भाई आपको भी गणपति बप्पा मोरिया, और हमने सुना है महाराष्ट्र में तो काफी ज्यादा जोर
1: बहुत
0: शोर से
1: ज्यादा
0: मनाया जाता
1: वहां
0: है,
1: की
0: तो
1: तो
0: कैसी रौनक
1: फेमस
0: है
1: है,
0: जरा बताइएगा।
1: बिल्कुल
0: फिलहाल
1: बताइएगा।
0: हम आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ही प्यारा गीत, और हमारे साथ हमारी सखी तो बिल्कुल झूम ही गई है।
1: जी हाँ, आज
0: हाँ
1: ये गीत इतने प्यारे प्यारे शोभा जी बजा रही हैं और आप सब इतनी सच्ची जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि झूमना तो बनता है। और वैसे
0: हाँ
1: भी कभी कभी किसी को देख कर हंसी भी निकल जाती है ना।
0: बिल्कुल।
1: ना
0: आरती, कहने का मतलब क्या है
1: ना,
0: तुम्हारा?
1: आपको देख के बिल्कुल हंसी भी निकल रही है,
0: कोई बात नहीं, हंस
1: लेकिन
0: तो ले हो ना,
1: लेकिन कम से कम हंसी तो आती है ना।
0: हंसी तो आई ना।
1: हाँ
0: और
1: चलिए,
0: चल
1: बढ़ते हैं इन सबके संदेशों की तरफ, वरना डांट
0: बिल्कुल,
1: भी पड़ेगी।
0: हाँ श्रोता कहेंगे कि मेल नहीं ले रहे। चलिए संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं साथ में राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी।
1: जी हाँ, तो ये सारे श्रोता तो जुड़े हैं, इसके साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। और ये कहते हैं, मैं तो बेवजह मुस्कुराता रहता हूँ और अपने आप को

0: को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। जी हाँ, जब हम अपनी कभी कोई तस्वीर देखते हैं जो उस वक्त बड़े शौक से ली थी, लेकिन उसे देखकर फिर जैसे बचपन में ली है और अब देखते हैं तो लगता है कि देखो बदलाव तो आया है, लेकिन कभी कभी हंसी
1: मुझे
0: आती है उन्हें
1: मुझे एक
0: देखकर।
1: कार्तिक किस्सा याद आ रहा है।
0: हाँ
1: मेरी
0: बताइए।
1: मेरा जो ब्रदर है ना, हम लोगों की फोटो खींच रही थी, तो मेरे भाई की फोटो मैंने स्कूल के कपड़ों में, तो कह रहे इसको तो कपड़े भी नहीं मिलते, तो
0: हाँ
1: ऐसे देख के हम मुस्कुराते हैं।
0: तो बचपन
1: ऐसा
0: में,
1: कुछ नहीं था, वो स्कूल ड्रेस में ही आ गया फोटो
0: बचपन
1: खिंचवाने।
0: में अक्सर ऐसा होता था, हमारी स्कूल ड्रेस ही हमारी इवेंट के लिए भी होती थी, फंक्शन के लिए भी होती थी, और वही हमारी सबसे स्पेशल ड्रेस भी होती थी।
1: बिल्कुल होती
0: तो
1: थी।
0: क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? अगर होता है तो बताइए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थैंक यू।
1: बहुत धन्यवाद
0: इसके साथ
1: आपका।
0: ही पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से
1: हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी, और ये
0: साथ
1: है
0: में हमारे साथ जुड़े हैं बक्सर बिहार से मारफुद्दीन अंसारी और शरफुद्दीन अंसारी, माफ़ कीजिएगा, फातिमा खातून अंसारी और सुमित सुरमेश शाहू। इसके साथ ही डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और डॉक्टर दानिश अंसारी। कोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या और परमानंद आर्या। साथ ही सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। मुझे लगता है कि पूरा बक्सर ही हमारे साथ जुड़ गया है।
1: बिल्कुल, पर खुशी होती है कि बहुत
0: हाँ,
1: सारे श्रोता
0: कि
1: हमारे साथ
0: आप
1: जुड़ रहे
0: हमें
1: हैं।
0: सुन रहे हैं।
1: जी हाँ, और अगला संदेश आया है बड़ेखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सू तासु जी। और अगला संदेश है, ये संदेश हमें आया है, जी हाँ, प्रोग्राम अच्छा लिख रहे हैं और ये संदेश हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे साथ हरजिंदर, ये नहीं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह चावड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अगला जो संदेश वो आया है रेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, रानी माणिकपुरी, नेहा माणिकपुरी का, ये लिखते हैं शोभा जी, हम तो सिर्फ हंसने के बहाने ढूंढते रहते हैं, बस मौका मिले तो हंस पड़ते हैं, कभी कभी हमें आपके कार्यक्रम में बहुत हंसी आती है, कभी कभी नाम शामिल नहीं होता तो गुस्सा भी आता है, तो दोस्त ऐसी बात नहीं है, हमने देखा आपका नाम शामिल किया, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि सबके नाम
0: लेकिन
1: शामिल हों।
0: इन्होंने हमें वो गणेश चतुर्थी की बधाइयां भी दी हैं, तो भाई हम
1: बिल्कुल
0: भी जाएंगे। गणेश जी की बप्पा की कृपा आप पे भी बरसती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये संदेश हमें आया है मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर जग्गी का, और अगला जो संदेश है
0: ये है संदीप मकर, ज्योति मन्नत और भरत मकर का, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरिया, जालंधर से।
1: और ये
0: इसके साथ ही खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, टीनी टू, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का, ये कुछ लिख तो रहे हैं कि हम तो मुस्कुराहट के साथ उठते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। तो भाई ये अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप का रक्तदान ही है। जब आप किसी को हंसाते हैं तो शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। तो
1: वाकई में
0: अच्छा काम करते रहिए,
1: बिल्कुल करते
0: और
1: रहिएगा,
0: हम भी एक अच्छा काम करते हैं। एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनावाइएगा।

0: तो श्रोताओं भाई, इतना प्यारा सा गाना, और आपको पता है इसमें गोविंदा ने अपना जो डांस का जलवा दिखाया था वो अलग ही था। अगर आप में से किसी ने इस गीत को देखा है तो ज़रूर पता चला होगा।
1: मैं
0: फिलहाल
1: आरती में तो ये भी कहूंगी कि जैसे तुम मुस्कुराने की बात कर रहे थे ना कि यादें ताजा हो जाती है, तो इस गीत को सुनते ही हमारी भी यादें
0: जी
1: ताजा हो जाती
0: हाँ,
1: है।
0: क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ये जो गीत है ये प्यारा लगता है मुझे। देखा जाए तो ऐसा कुछ लिरिक्स में है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये
1: डांस
0: अटपटी सी जो लिरिक्स है ना वो हंसा देती है।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह लिखने वाले हैं, मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से। के साथ ही अगले जो श्रोता हैं,
1: जी हाँ, अगले जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने एक गीत की फरमाइश भेजी है, वो हैं सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, रोहिणी दिल्ली से। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है, ये है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का संदेश। और हमारे साथ जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू, श्रोता रघुवीर नगर से। और ये संदेश हमें आया है, ये ले चुके हैं तो हम आगे ही बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्त, बार बार तो हम एक संदेश नहीं ले सकते ना। ये अगला संदेश हमें आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशू अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की ओर से ये संदेश। और अगला जो संदेश है ये भी हम ले चुके हैं तो अगली ओर रुख करते हैं। ये संदेश हमें आया है, जी हाँ संदेश ये अगला देते हैं, ये वाला है, संदेश

0: अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक का।
1: जी हाँ, ये संदेश भेजने वाले बहुत सारे लोग हैं। और इसके साथ ही बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने झज्जर हरियाणा से भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी पहले भी संदेश भेज चुके हैं और शायद इनका संदेश लिया भी जा चुका है। साथ ही इन्होंने कई बार संदेश भेजे हैं। तो फिलहाल अभी नए संदेशों को हम ढूंढते हैं। फिलहाल तब तक आप ये गीत सुनिए।

0: हाँ, आप जो है हमारे दिल में और हम आपके दिल में तो रहते ही हैं, क्योंकि रेडियो का ये संगीत बजता रहता है और आपके संदेश हमारे दिल में गूंजते रहते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात आप सबसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सब जो इस कार्यक्रम में संदेश भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत टाइम देते हैं आप हमारे संदेशों को भेजने के लिए, हम तक संदेश पहुँचाने के लिए। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो शायद कार्यक्रम को ध्यान से सुनते नहीं हैं, उनके संदेश लिए जा चुके होते हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे होते हैं और बार बार शिकायत करते हैं कि हमारा संदेश नहीं लिया गया। तो भाई इस बात पे ध्यान दीजिए। और शोभा जी, जाते जाते सबको गणेश चतुर्थी की
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: और साथ ही आज हिंदी दिवस भी है तो कोशिश कीजिएगा हिंदी में ही काम करें।
1: बिल्कुल, हिंदी अपनी भाषा है तो उसको बिल्कुल तवज्जो।
0: जी हाँ, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तो और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इससे बड़ी खुशनसीब।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में और ठीक उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है, एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय से बचाव अभियान जारी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों

0: को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा प्रोटोकॉल और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of Prime Minister. In a video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated Prime Minister Narendra Modi for the success of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that its success left an indelible mark on the global stage. In a social media post, the minister said that signing of the landmark New Delhi Declaration is not just a document, but is a statement of India's growing global influence under the leadership of Prime Minister Modi. The historic BRICS summit successfully concluded in New Delhi yesterday. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said, UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029.
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
3: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इम्प्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2029 द भारतीय न्याय संहिता विच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मैनी स्टेट्स द कन्विक्शन रेट हैज सीन अ 30% इंक्रीज इन जस्ट अ सिंगल ईयर अ सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड वेयर जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड विद
2: और 3 साल में न्याय मिल जाए ऐसी एक प्रणाली खड़ी हो रही है।
1: हिंदी दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे। इट वाज ऑन दिस डे इन 1949 दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टुडे सेड दैट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। शेयरिंग अ वीडियो मैसेज ऑन हिंदी दिवस टुडे ही सेड that Hindi language is not in competition with any other language, but an important connecting thread of national unity. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman yesterday. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far while search and rescue operations

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन अपने पुत्र के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ जी, रुको अभी आती हूँ।
0: अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। और सुनो, पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा।
1: ठीक है जी।
0: आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है, फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है।
0: सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब, मिठाई खाइए। लो बेटा, आप भी ले लो ना।
2: जी भाई साहब, ये है हमारा लाडला बेटा जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी।
0: अच्छा बेटा, प्रमोद कौन सी कंपनी में हो?
3: जी मैं एक सॉफ्टवेयर

0: हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी, लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई।
1: अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब बिटिया नजर नहीं आ रही।
0: जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं।
1: आओ बिटिया यहाँ बैठो। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
2: जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है।
1: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद?
3: माँ आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।
4: अरे बेटा शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है।
5: हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो।
1: बहन जी अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था।
4: भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं।
0: जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है।
1: हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिक जिक सही नहीं लगती।
0: बहन जी हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे।
4: भाई साहब वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, एक तो 5 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
0: जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
4: अरे भाई साहब लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में।
0: भाई साहब अभी हमारा एक बेटा भी है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना।
1: अरे भाई साहब आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा और अभी तो वो बहुत छोटा है।
0: भाई साहब ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे।
4: अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2 लाख रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं।
5: श्रोताओं इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं।
1: लो बच्चे भी आ गए, तो बताओ प्रमोद बेटा लड़की कैसी लगी?
3: माँ मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
5: अरे बेटा किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती।
1: अरे नहीं फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है, बोलो बेटा।
2: जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
4: ठीक है भाई साहब अब हम चलते हैं, बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे।
5: और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं, और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा?
2: ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है।
0: मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा?
5: देखो जी लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता, भला आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है, समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है, गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे।
0: तुम ठीक ही कह रही हो, भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा।
5: प्रिय श्रोताओं कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब काम अच्छे से निपट गए, और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई, घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी, और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे।
6: देखो जी जब से किरण

0: जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है।
1: हेलो हेलो, अरे भाई साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक। क्या इरादा है, अपनी जुबान से फिर गए क्या?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है।
1: भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ। आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं।
2: अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हमारी मजबूरी समझिए ना।
1: हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे। पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली।
2: हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में बिहा दी है। मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं।
0: अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो, किरण को ले आओ। एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं।
3: बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है, तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं।
4: माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण किरण जल्दी बाहर आ।
0: जी बोलिए।
4: मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें।
0: सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे?
4: अच्छा, जुबान चलाती है।
0: मुझे मत मारो।
3: प्रमोद एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको।
4: ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा।
0: नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी, बचाओ कोई।
5: अरे ये प्रमोद की घर से कैसी आवाजें आ रही है, चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। उसको बुलाता हूँ। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति मिलकर आग लगा रहे हैं, आप जल्दी आइए।
2: ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा?
0: पापा पापा पापा पापा।
5: अरे भाई साहब, मैंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
4: अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है।
6: सर हमने कुछ नहीं किया, किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है।
2: क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या?
0: सर मेरे पति ने और मेरी सास ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला, मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए और मेरी सास को नगद कैश।
2: हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माताजी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवलदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इनको।
0: और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं और किरण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रमोद और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया, और आइए सबरस के अंतर्गत सुनते हैं संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत।

संगीता पंत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत कार्यक्रम सब रस के अंतर्गत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शुभम सरकार से वायलिन वादन, राग है गुर्जरी तोड़ी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश

0: her andın.
1: घर आंगन के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई उम्मीदें लेकर आए और हर विघ्न दूर करें। आज का दिन कई खूबसूरत रंगों से सजा है गणेश चतुर्थी। साथ ही हम बात करेंगे हिंदी दिवस की, हरतालिका तीज की, परंपराओं और खूबसूरत रंगों की, स्वाद की दुनिया और गीत संगीत तो होंगी ही जो इस खुशनुमा माहौल को और भी खास बना देंगे। तो इस खास दिन के खास सफर में बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन और आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म इलाका से। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आज घर घर में बप्पा का स्वागत हो रहा है, कहीं ढोल ताशों की गूंज है, कहीं फूलों और रोशनी से सजा घर है, तो कहीं सुबह से ही रसोई में बन रहे हैं बप्पा के सबसे पसंदीदा मोदक। और आज का दिन पूजा का सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी कला और साथ मिलकर उत्सव मनाने की खूबसूरत परंपरा है। खासकर महाराष्ट्र में आज का दिन, जहां बप्पा के साथ संगीत, ढोल, ताश

सजावट और सामूहिक उत्सव की रौनक देखने को मिलती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और शुभारंभ का देवता माना जाता है, यानी नए काम से पहले उन्हें स्मरण किया जाता है। और बप्पा के रूप में भी कितने सुंदर संदेश छिपे हैं। अब जरा गणपति की प्रतिमा पर गौर कीजिए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े कान, छोटी सी आंखों में एकाग्रता और बड़े कानों में जैसे कोई संदेश। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। गणेश जी का वाहन मूषक भी अपने आप में एक दिलचस्प प्रतीक माना जाता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व और वाहन इतना छोटा, मानो संदेश ये हो कि बुद्धि और विनम्रता के सामने आकार मायने नहीं रखता, तो हमें अनुकूलन की याद दिलाती है। कभी मजबूत, कभी बेहद कोमल, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं, जहां जरूरत हो वहां शक्ति, जहां जरूरत हो वहां पे थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए जाए। इस बार बप्पा का स्वागत करते हुए प्रकृति का भी ख्याल रखें दोस्तों। मिट्टी की प्रतिमा, प्राकृतिक रंग और पर्यावरण अनुकूल सजावट और विसर्जन को अपनाएं। आखिर बप्पा से हमें सुख, शांति और प्रकृति की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आस्था से प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचे? तो इस गणेश चतुर्थी बप्पा आपके घर खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में हर विघ्न दूर करें और हर नई शुरुआत को शुभ बनाएं। आपके घर में भक्ति की रोशनी रहे, रिश्तों में मिठास रहे और मन में विश्वास बना रहे।

अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडेकर को फिल्म कालचक्र से, और हरितालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रृंगार की चमक, मेहंदी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और शिव पार्वती के प्रेम में आस्था। हरितालिका तीज भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम, संकल्प और नारी के आत्मबल की भी खूबसूरत झलक दिखाई देती है। तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट संकल्प की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और आज का दिन सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी लोक संस्कृति उत्सव भी है। 16 श्रृंगार, हाथों में रची मेहंदी, हरे लाल रंग के परिधान, तीज के लोकगीत और सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाने की परंपरा इस पर्व को और भी खास बना देती है। अब जरा अपने घर की तीज याद कीजिए। किसी के घर में आज मेहंदी लग रही होगी, किसी कहीं सास अपनी बहू को तीज का सामान दे रही होगी, कहीं सहेलियां मिलकर लोकगीत गा रही होंगी और कहीं दादी नानी पुरानी तीज की कहानियां सुना रही होंगी। और अलग अलग राज्यों में इसे मनाने के अपने अपने खूबसूरत तरीके हैं। खासकर उत्तर भारत में तीज के लोकगीत, झूले, श्रृंगार और सामूहिक उत्सव इसकी पहचान बन चुके हैं। और शायद इस पर्व की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हरतालिका तीज हमें माता पार्वती के उस संकल्प की याद दिलाती है कि अपने जीवन के फैसले में अपनी इच्छा, विश्वास और आत्मबल का उतना ही महत्व है। तो आइए

के इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती से सभी के जीवन में प्रेम, विश्वास, सुख और सौभाग्य की कामना करें। हरितालिका तीज के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी बलमा। और आज 14 सितंबर है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारे भावों की आवाज़ है। वो भाषा जिसमें माँ की डांट भी अपनापन लगती है, दोस्तों की हंसी और भी खुलकर सुनाई देती है, और दिल की बात कहने के लिए अक्सर किसी शब्द कोश की ज़रूरत नहीं पड़ती। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी की खूबसूरती सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है, इसकी विविधता में भी है। हिंदी अपने साथ देश के अलग अलग इलाके, शब्द, बोलियां, मुहावरे और संस्कृतियां लेकर चलती हैं। इसमें संस्कृत की गंभीरता है, लोक भाषाओं की मिठास है, और बदलते समय के साथ नए शब्दों को अपनाने की सहजता भी। और शायद यही किसी भी जीवंत भाषा की पहचान है, वो समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोती। आज हिंदी दिवस पर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हम हिंदी कितनी बोलते हैं, बल्कि ये भी है कि हम हिंदी को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करने का मतलब दूसरी भाषा से दूरी बनाना नहीं है दोस्तों। जितनी भाषाएं हम सीखें उतनी ही हमारी दुनिया बड़ी होती है। लेकिन अपनी मातृभाषा या अपनी सहज भाषा में सोचने और महसूस करने का अधिकार अपनी जगह बेहद खास है। तो आज हिंदी दिवस पर हिंदी को सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित ना रखें, इसे बोलिए, पढ़िए, लिखिए और सबसे ज़रूरी, इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं होती, भाषा हमारी स्मृतियां संभालती है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाती है और आने वाली पीढ़ियों तक हमारी पहचान पहुंचाती है।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, एशिया कप फिर से भारत के नाम। टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, वो भी रिकॉर्ड 8वीं बार। मैदान पर शुरू से ही भारतीय टीम का इरादा सिर्फ खेलने का नहीं था, जीतने का था। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाई, दबाव में हर पल को आत्मविश्वास में बदला, और यही है टीम इंडिया की असली ताकत। एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम मिलकर जीत की कहानी लिखती है। तो आज सिर्फ इस ट्रॉफी के लिए नहीं, उन बेटियों के लिए भी जो मैदान पर उतर कर नई पीढ़ी से कह रही है, सपने बड़े रखिए, मेहनत पूरी कीजिए, क्योंकि जब हौसला बुलंद हो तो जीत सिर्फ मंजिल नहीं अपनी पहचान बन जाती है। टीम इंडिया, बहुत बहुत बधाई आपको। यही जज्बा, यही जुनून और यही जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे।

अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को, फिल्म थी चक दे इंडिया। और दोस्तों आज हिंदी दिवस है और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महिला लेखिकाओं का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही महान लेखिकाओं की जिनकी कलम ने साहित्य के साथ साथ समाज को भी नई दृष्टि दी। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा ने कविता के साथ साथ गद्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यामा, नीरजा उनकी चर्चित कृतियां हैं। इसके बाद नाम आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का, उनकी कविता झांसी की रानी ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता को जन जन तक पहुंचाया। मुकुल उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, उनकी लेखनी में राष्ट्र प्रेम, साहस और सामाजिक चेतना का अद्भुत मेल दिखाई देता है। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य को अपने विशिष्ट भाषा और जीवंत पात्रों से समृद्ध किया। मनु भंडारी का नाम हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बंटी, महाभोज और एक इंच मुस्कान जैसी रचनाओं में उन्होंने परिवार, रिश्तों, राजनीति और सामाजिक बदलाव को बेहद मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। शिवानी यानी गौरा पंत ने अपनी सहज और प्रभावशाली भाषा में भारतीय परिवार, समाज और स्त्री जीवन की अनेक परतों को सामने रखा। कृष्णकली, चौदह फेरे और भैरवी उनकी चर्चित रचनाएं हैं। और इस सूची में मृदुला गर्ग का नाम भी बहुत जरूरी है। चित कोबरा, कठगुला।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से। और आज है विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के स्वागत का दिन और गणपति बप्पा को मोदक प्रिय है, तो आज बात हो जाए ऐसे मोदक की जो टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो कहते हैं त्योहारों की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, उसमें छिपी यादों और परंपराओं में होती है। लेकिन आज की रसोई में हम उसी परंपरा को थोड़ा सा नया ट्विस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी ओट्स नारियल मोदक। इसके लिए चाहिए ओट्स, ताज़ा नारियल, थोड़ा सा गुड़, मुट्ठी भर मेवे और इलायची। चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा रागी का आटा भी मिला सकते हैं, जिसमें स्वाद के साथ साथ फाइबर भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भूनकर पीस लीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाइए। इसमें कटे हुए बादाम, काजू और इलायची भी डालिए। ये तैयार हो गया मोदक का जो फिलिंग है। अब ओट्स और थोड़ा सा रागी लेकर उसमें गर्म

की मदद से नरम आटा गूंथिए। इसमें छोटी छोटी लोइयां बनाकर हथेली पर फैलाइए। बीच में नारियल गुड़ की फिलिंग रखिए और मोदक को एक आकार दीजिए। अगर आपके पास मोदक का सांचा है तो काम और भी आसान। इन मोदकों को भाप में पकाइए लगभग 10 से 12 मिनट तक। बस तैयार है हमारे सॉफ्ट, खुशबूदार, स्वादिष्ट हेल्दी मोदक। और एक छोटी सी बात, हेल्दी का मतलब ये नहीं कि त्योहारों में मिठास ही खत्म कर दे। मात्रा का ध्यान रखें, सामग्री थोड़ी सी समझदारी से चुनें और परंपरा का स्वाद जरूर बनाए रखें।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता गीता से। और त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रंग बढ़ जाते हैं, साड़ियों की चमक, कुर्तों के रंग, गहनों की खनक और घर सजाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों की खरीदारी में एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। खरीदारी हो खूबसूरत भी, समझदारी भरी भी और पर्यावरण के लिए थोड़ी बेहतर भी। तो सबसे पहले बात कपड़ों की, हर त्योहार पर नया

पहनना जरूरी नहीं है। अपनी अलमारी में रखी साड़ी को नया ब्लाउज देकर, किसी कुर्ते को नए दुपट्टे के साथ, या माँ की साड़ी को कंटेम्प्रेरी अंदाज में पहनकर आप बिल्कुल नया फेस्टिव लुक बना सकते हैं। और अगर खरीदारी करनी ही है तो हथकरघा, खादी, कॉटन, चंदेरी, महेश्वरी या दूसरे पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को चुनना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे हमारा ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, वो भी आगे बढ़ता है, कपड़ों में एक अलग पहचान भी आती है। अब बात बजट की। त्योहारों की खुशी शॉपिंग बैग्स की संख्या से नहीं, उन चीजों से तय होती है जिन्हें हम सच में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खरीदारी की एक छोटी सी सूची बना लें, पहले ही पसंद आया तो खरीद लिया की जगह क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है वाला सवाल काफी पैसे बचा सकता है। तो इस फेस्टिव सीजन एक खूबसूरत कोशिश क्यों ना करें, कम खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, भारतीय कला और कारीगर को चुनें और ऐसी चीजें घर लाएं जिनकी खूबसूरती त्योहार खत्म होने के बाद भी बनी रहे। क्योंकि असली फेस्टिव शॉपिंग वही है जिसमें खुशी घर तक आए लेकिन उसका बोझ हमारी जेब और पर्यावरण पर ना पड़े। खुशियां खरीदने के लिए बड़ी कीमत नहीं चाहिए, बस पसंद में थोड़ी समझदारी और दिल में थोड़ी सादगी चाहिए।

अभी हम सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है सुहाना सफर। तो इन्हीं खूबसूरत रंगों और शुभकामनाओं के साथ आज का सफर यहीं तक। हरतालिका तीज आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। बप्पा आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि भरे। इसी के साथ दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। यह सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार

0: Bulletin. आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 1:10 और 18 सेकंड, और ये वक्त है आपके उस खूबसूरत से प्रोग्राम का जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार, प्रोग्राम एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको लिए चलूंगी 1967 के इस दौर में जब बॉलीवुड में सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो रहा था। आज हम बात करेंगे निर्देशक सूरज प्रकाश की एक सुपरहिट सस्पेंस से भरी फिल्म, थ्रिलर वाली फिल्म, जिसमें एक ऐसा ड्रामा था जो लास्ट तक, एंड तक फिल्म के आपको बांधे रखता है। एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री जिसने दर्शकों को आखिरी सीन तक इस तरीके से उत्सुकता बनाए रखा कि वो एक पल के लिए भी उठने का नाम नहीं लिए। बहुत खूबसूरत सी इसमें कास्ट थी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म लेकर आए हैं। और अब अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो फिर क्या करना है आपको, अपने जवाब मेल के ज़रिए पहुंचाना है हम तक, और मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप मेरे इस प्रोग्राम के हम सफ़र बन सकते हैं। तो फिलहाल सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज पिटारे में कौन सी फिल्म छुपी हुई है जो कि 1967 में रिलीज हुई थी।

और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिल्म का सही नाम लिखकर हम तक पहुंचाया है। ढेर सारे संदेश आपके सही जवाब के साथ हम तक पहुंच गए हैं और आप हमारे हमसफर भी बन गए हैं, इसके लिए भी हम आपको शुक्रिया कहते हैं। जी तो आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 1967 की फिल्म आमने सामने, एक ऐसी फिल्म जिसमें सच और झूठ, भरोसा और शक, प्यार और रहस्य सब आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया था सूरज प्रकाश ने और निर्माता भी सूरज प्रकाश ही थे। मुख्य कलाकार में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, राजेंद्र नाथ, कमल कपूर, करण दीवान और शमी जी नजर आए थे। संगीत जो आप सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, ये संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और जो गीत हैं उसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। 2 घंटे 43 मिनट की अवधि वाली ये सुपरहिट फिल्म जिसने एक ऐसे कहानी को दर्शकों के सामने पेश किया, ऐसी कहानी से दर्शकों को बांधे रखा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं।

लता और रफी साहब की आवाज में ये सुपरहिट सॉन्ग फिल्म आमने सामने। कहानी का केंद्र है दीपक वर्मा, जिसका किरदार निभाया है शशि कपूर ने। दीपक पर अपनी अमीर पत्नी की हत्या का आरोप लगता है। अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण वो बरी हो जाता है। इसके बाद दीपक अपनी पुरानी पहचान से दूर होकर गोपाल मित्तल के नाम से मुंबई में नई जिंदगी शुरू करता है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है खूबसूरत और अमीर लड़की सपना से, जिसका किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया है। शुरुआत में तो सपना को गोपाल बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि गोपाल उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है। सपना का परिवार चाहता है कि उसकी शादी प्रेम से हो, जो किरदार प्रेम चोपड़ा ने निभाया है, लेकिन सपना अपने दिल की सुनती है और गोपाल को चुनती है। दोनों शादी कर लेते हैं। सुनने में तो आपको यहाँ तक एक सामान्य प्रेम कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन आमने सामने की असली कहानी तो शादी के बाद ही शुरू होती है। हनीमून के दौरान सपना की जान लेने की कोशिश होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सपना को कौन मारना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोपाल सचमुच वही व्यक्ति है जो वो खुद को बताता है। धीरे धीरे सपना को पता चलता है कि उसके पति गोपाल का असली नाम दीपक वर्मा है, और ये वही दीपक है जिस पर अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी है, उसकी हत्या का आरोप लग चुका है। अब सपना के मन में अपने ही पति को लेकर डर और शक दोनों पैदा होने लगते हैं। गोपाल का बदलता व्यवहार इस रहस्य को और भी गहरा करता है, और उसके बाद हम और आप यानी कि दर्शक भी सोचने लगते हैं कि क्या दीपक वास्तव में हत्यारा है, या फिर कोई और है जो घटनाओं के पीछे से पूरी कहानी चला रहा है। और यही सवाल फिल्म को सस्पेंस से भर देता है। फिल्म आमने सामने।

0: तुमसे रूठ जाए।
1: शशि कपूर उस समय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक और आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। वहीं शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और अभिनय की उनकी जो एक अलग पहचान थी वो दर्शकों को अपनी ओर खींचती थी। आमने सामने फिल्म में दोनों की जोड़ी के साथ कहानी का रहस्य फिल्म को सामान्य रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। शशि कपूर ने एक ही किरदार के दो नामों यानी कि दीपक वर्मा और गोपाल मित्तल के जरिए कहानी के रहस्य को संभाला, जबकि शर्मिला टैगोर का किरदार सपना धीरे धीरे प्रेम के शक और फिर डर की ओर बढ़ता है। अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को और याद करना चाहेंगे, वो है प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने प्रेम मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार की मौजूदगी कहानी में एक और कोड जोड़ती है, खासकर तब जब सपना गोपाल को चुनती है और परिवार और प्रेम की प्रतिक्रिया कहानी को आगे बढ़ाती है। प्रेम चोपड़ा के करियर में ये वो दौर था जब वे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट नेगेटिव इमेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, और इन सब के बीच आमने सामने फिल्म में इन हर किरदार ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया। आमने सामने फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी उसका रहस्य बनाए रखना। कहानी लगातार दर्शकों के मन में सवाल पैदा करती थी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, गोपाल कौन है, दीपक का अतीत क्या है, सपना पर हमला कौन कर रहा है। यानी फिल्म का शीर्षक सिर्फ दो लोगों के आमने सामने की बात नहीं करता, बल्कि कहानी में कई तरीके के विरोधाभासों को भी सामने लाता है। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को भी मैं शामिल करने जा रही हूं।

अजीत भापसर जी, प्रमिला भापसर वीरन गांव गुजरात से ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राविया शेख रेख, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सतीश शनीजा, बिमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ पिंगा वाला चौक जालंधर से जुड़े हुए हैं। और ये संदेश पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह बल्लवी जी का आया है। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से सोन सिंह गिल, दलजीत राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्य हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस जी पलारी से हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। और तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी हमें सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम जी हमें सुन रहे हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार जी डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। शिवा गो प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदाबासी निगत परवीन शनवाज सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी जी हमारे साथ हैं। और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी

शांति नगर सोनीपत से हैं। अगला संदेश अजीत भापसर जी का ही एक और पहुंचा है, भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा है हमारे साथ, और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बेरुड़ी नाना जी तामसे, मीना तामसे जी हमें हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटा पारा से हमारे साथ हैं, गांव नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जामुन देवी प्रेम पूजा बेबी आराध्या हमारे साथ हैं। अगला संदेश देवनारायण साहू योगिता चुलबुली गीता जी भोईना पार बालोद छत्तीसगढ़ से आया है। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। अगला संदेश हमारे पास बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया का आया है, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। पीछीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्वला विशाल जी का आया है। फारूक अली खान जी हमारे साथ हैं, और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी का एक और संदेश है। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं, भूषण खेरा जी हमारे साथ हैं, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से अजय कुमार जय किशन और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र खुराना जी निर्मलता नगर दिल्ली से कह रहे हैं कि आज की फिल्म आमने सामने मैंने देखी हुई है और बहुत बेहतरीन फिल्म है, बिल्कुल शुक्रिया आपका। रोहित वशिष्ठ जी हमारे साथ प्रेम नगर प्रेम सागर सुभाष लता जी के साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस हम सफर बनने के लिए, सफर में हम सफर बनने के लिए। और एक और संदेश आया है शिवा गोप जी का पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, रहस्य भी है, शक की परछाई भी है, जो कहानी के हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। तो ये फिल्म हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालकर अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। फिलहाल तो वक्त कह रहा है कि आपसे मुझे अनुमति लेनी है, लेकिन 3 बजे आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 3 बजे मैचिनी मेलेडीज लेकर एक बार फिर हाजिर होंगी। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा, एक ही कलाकार शिल्पा जी आपके साथ रहेंगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: उर्दू च खबर उस तो बाद मिलेंगे 2 बजे प्रोग्राम लेके दोबारा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
2: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
2: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
3: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा

0: और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मॉनसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 पान अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आज इस कार्यक्रम का एक ही कलाकार से। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का नाम लेना ही काफी होता है। और आज का हमारा जो नाम है वो है जीपी सिप्पी साहब का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे फिल्मकार जिनकी पहचान सिर्फ एक निर्माता के तौर पर नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी फिल्में दी जिनकी चमक आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इन फिल्मों के पीछे था एक बड़ा फिल्मी परिवार, और उस परिवार की मजबूत नींव रखने वाला नाम था जीपी सिप्पी। तो आइए दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे जीपी सिप्पी की जिंदगी, उनकी फिल्में, उनका सफर, उनकी फिल्मों और उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। सबसे पहले सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, जीपी सिप्पी का जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था। उनका पूरा नाम था गोपाल दास परमानंद सिपाही मालनी। उनका जन्म उस समय के सिंध क्षेत्र में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले दोस्तों, वह उनका जो जीवन था बिल्कुल अलग दिशा में था। वे कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और बाद में उन्होंने मुंबई में रियल एस्टेट और निर्माण के कारोबार में भी काम किया था। यानी जिस व्यक्ति ने आगे चलकर करोड़ों दर्शकों को सिनेमा के पर्दे पर सपने दिखाए, उनकी शुरुआत फिल्मी दुनिया से नहीं बल्कि दूसरे व्यवसायों से हुई थी। लेकिन दोस्तों, शायद सिनेमा उनके लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं था, सिनेमा उनका जुनून बन चुका था। और फिर आया वह समय जब उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा।

साथियों, 1951 में जीपी सिप्पी ने फिल्म बनाई सजा। फिल्म में देवानंद और निम्मी थे और यह फिल्म कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने जीपी सिप्पी को एक ऐसी दुनिया से परिचित करा दिया जिससे फिर उनका जो नाता जीवन भर फिल्म से जुड़ गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और सिप्पी फिल्म्स के बैनर के तहत कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया। उनकी फिल्मों की सूची देखें तो पता चलता है कि वे अलग-अलग तरह की कहानियों और सितारों के साथ काम करने का साहस रखते थे। उन फिल्मों में शामिल थी ब्रह्मचारी, बदन, अंदाज, सीता और गीता और फिर आई शोले।

साथियों, जीपी सिप्पी के परिवार में भी सिनेमा का प्रभाव बढ़ता चला गया। उनके बेटे रमेश सिप्पी आगे चलकर हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक बने और यही पिता पुत्र की जोड़ी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक लेकर आई, ज्योति शोले। लेकिन शोले तक पहुंचने से पहले दोस्तों, एक और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई, वो थी अंदाज। सन 1971 में आई अंदाज का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और निर्माण जीपी सिप्पी का था। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर प्रमुख भूमिकाओं में थे। यही वह दौर था जब रमेश सिप्पी ने निर्देशक के रूप में पहली अपनी पहचान बनानी शुरू की। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, अब आता है जीपी सिप्पी के करियर का शायद सबसे बड़ा अध्याय। कहा जाता है कि सीता और गीता की सफलता के बाद जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी से एक बड़े एक्शन फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा जताई। यहीं से आगे चलकर उस फिल्म की तैयारी हुई जिसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। वो फिल्म थी शोले। सीता और गीता के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी और आगे शोले में भी दोनों साथ दिखाई दिए। दोस्तों, शोले एक फिल्म नहीं, एक इतिहास बन चुका है, निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी का।

साथियों, उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ बड़े कैनवास का आकर्षण भी दिखाई देता था। वे सिर्फ यह नहीं सोचते थे कि फिल्म आज कितनी चलेगी, वह सोचते थे कि क्या यह फिल्म आने वाले सालों में भी याद रखी जाएगी। शायद दोस्तों यही कारण है कि उनके बैनर से निकली कई फिल्में आज भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहती हैं।

दोस्तों बातें तो बहुत हैं लेकिन समय हमें इशारा कर रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। वक्त हो गया है दोपहर के 3:17 और जानते हैं ना आप ये वक्त कौन से प्रोग्राम का है? जी हाँ, मैटिनी मेलेडीज का। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम कुछ खास लेकर आए हैं, खास इसलिए क्योंकि जिंदगी में रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत अनमोल है। मतलब कह सकते हैं कि आप हर रिश्ता दोबारा मिल जाता है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक ही बार मिलता है। जो लगाव, जो प्रेम, जो अपनापन इस रिश्ते में है, वो किसी और रिश्ते में है ही नहीं। तभी तो इस रिश्ते को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदी सिनेमा में भी इस किरदार पर कई सारी नायिकाओं ने काम किया है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं माँ, माँ की। हिंदी सिनेमा में जैसा कि हमने आपको बताया, माँ का किरदार जो है वो सिर्फ एक भूमिका नहीं रहा, बल्कि ममता, त्याग, संघर्ष और परिवार को जोड़कर रखने वाली उस सब भावना का प्रतीक रहा है जिसे दर्शकों ने हमेशा अपने दिल के बहुत करीब रखा। और इस तस्वीर में 1960 से 2000 के दशक तक माँ के किरदारों से पहचान बनाने वाली कई सारी अभिनेत्रियों को दिखाया गया है। पीछे के दौर की बात करें तो लीना चिटनिस, निरूपा रॉय, दुर्गा खोटे, ललिता पवार, अचला सचदेव जैसी जो दिग्गज अभिनेत्रियां थीं, उन्होंने उस दौर में माँ के किरदार को ऐसी भावनात्मक गहराई दी कि कई बार उनका छोटा सा दृश्य भी पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाता था। तो आज हम आपके लिए चुनकर कुछ इसी तरीके के किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों को लेकर आए हैं जिन्होंने पर्दे पर माँ का ऐसा रोल निभाया कि उसमें अपनी माँ नजर आती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ और उसके बाद आगे की बात भी करेंगे। और हाँ, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको माँ का किरदार निभाने वाली कौन सी अभिनेत्री सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, या फिर वो कौन सी अभिनेत्री है जिसे आप माँ के किरदार में ज्यादातर पसंद करते थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और हमारे साथ जुड़ने का तरीका तो आपको पता ही है, मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा में माँ का किरदार निभाने वाली कई दिग्गज अभिनेत्रियां थीं। इन अभिनेत्रियों पर कई सदाबहार गीत भी फिल्माए गए या फिर उनके किरदारों को समर्पित गीत फिल्मों में शामिल किए गए। तो आज हम कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों को चुनकर लेकर आ रहे हैं और उनके ऊपर फिल्माए या उनके सराउंडिंग जो फिल्माए गीत हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। अब हम बात करते हैं 1960 के दशक में माँ, दादी और नानी ऐसे कई सारे यादगार रोल निभाए अचला सचदेव ने। फिल्म वक्त याद है ना आपको? वक्त में बलराज सहानी के साथ उनकी जो जोड़ी थी और उन पर फिल्माया गया गीत आज भी विंटेज शादियों और महफिलों की शान है। तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं, सुनते हैं इन्हीं के ऊपर पिक्चराइज ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी और इन्होंने इस फिल्म में, वक्त फिल्म में बलराज सहानी की पत्नी का रोल निभाया था और बेटों की माँ बनी थी। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

1960 के दशक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फिल्म थी शहंशाह अकबर की पत्नी और सलीम की माँ, इनका किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री। और ये फिल्म ऐसी थी जिसने कई सारे शोहरत के झंडे गाड़े, शायद आपको याद आ ही गया होगा। बात कर रहे हैं हम 1960 की फिल्म मुगले आजम। और जब बात मुगले आजम की हो तो उसमें हम शहंशाह अकबर की पत्नी और सलीम की माँ यानी कि महारानी जोधाबाई को कैसे भूल सकते हैं। और आप जानते हैं ना कि ये किरदार किसने निभाया था? दुर्गा खोटे ने। इतनी खूबसूरत लगी थी वो इस फिल्म में, लगता था कि बाकी जो असली महारानी जोधाबाई थी वो यही थी। तो इनके ऊपर ये जो गीत हमने चूज किया है इस फिल्म से, वो गीत इनके ऊपर फिल्माया तो नहीं गया है, लेकिन ये इस गीत के आसपास जरूर थी। सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

तो अब हम मिलते हैं एक सख्त कड़क मिजाज चालाक माँ, जो कभी कभी सास के रूप में भी अपना खौफनाक रूप दिखा देती थी, ललिता पवार। जी हाँ, जहाँ एक तरफ निरूपा रॉय और सुलोचना ममतामयी माँ बनती थी, वहीं ललिता पवार को 1960 के दशक में सख्त कड़क मिजाज वाली माँ के रूप में भी पहचाना जाता है। वहीं इनका जो सास वाला जो किरदार था, सास भी माँ होती है तो वो भी बहुत कड़क होता था, और ऐसा लगता था कई बार कि अगर असल जिंदगी में इस तरीके की सास होगी तो फिर क्या ही कहना है। तो कई बार खौफ इतना ज्यादा हो जाता था इनकी फिल्मों में इनके किरदारों का, तो ये एक इनकी कला थी जो वो अपने किरदार में इस तरीके से वो ढालती थी उस किरदार को कि वो पूरा असली नजर आता था। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं की एक फिल्म अनाड़ी की, जो कि 1959-60 में आई थी, और माफ कीजिएगा ये 1960 में आई थी, और सुनते हैं इसी फिल्म से ये।

और अब अगली माँ का जो गीत है वो आप तक पहुंचाए, उससे पहले आपकी जो संदेश है उनको हम शामिल कर लेते हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशव रिधान खुराना जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश पहुंचा है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर जी का, और ये संदेश हमारे पास मस्कीन दादा जी का आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन, शहनवाज सरफाज, फरदीन सुहान अरजान और ये लिख रहे हैं कि बेहतरीन प्रस्तुतिकरण और गीतों के लिए शुक्रिया, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के पर्दे में रियल माँ के किरदार का प्रोग्राम चल रहा है। अचला सचदेव, निरूपा रॉय, कामिनी कौशल, दुर्गा खोटे, बहुत सारी माँ ऐसी हैं जिन्होंने, अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने माँ का किरदार निभाया था और वो कामयाब भी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुदर्शन मुखी, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, और खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुछ और संदेश भी हमारे पास आएंगे, उनको भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले जो अगली माँ हमने आपके लिए ली है वो है लीना चिटनिस। 1950 और 60 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में एक लाचार, बीमार और भावुक माँ का किरदार निभाया जो दर्शकों को रुला देता था। चलिए सुनते हैं 1961 में उनकी फिल्म गंगा जमुना से ये गीत।

दोस्तों ये थी कुछ माएं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर माँ का किरदार निभाकर उस किरदार को अमर बना दिया। अब वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और बातें करें, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और गीत भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगली मुलाकात में हम उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, जल्दी ही मिलने के वायदे के साथ आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का। सामीन, हज़रत अमीर खुसरो को हिंदी और उर्दू दोनों का पहला शायर माना जाता है। उन्होंने पहेलियाँ, कहमकरनियाँ, दो सुखने और कव्वालियाँ दोनों भाषाओं के मेलजोल से बनी भाषा हिंदवी में लिखी है। उनकी तसानीफ में जगह जगह हिंदी अल्फाज और मुहावरात मिलते हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस।

सामिन, कबीर का शुमार भक्ति काल के अहम शोरा में होता है। उनकी शख्सियत में दोनों मजाहिब के असरात नज़र आते हैं। कबीर ने अपने अशार में हज्ब मौका, ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी और अवधी तीनों जबानें इस्तेमाल की हैं। उनके दोहे मशहूर हैं। उनका मजमुआ बीजक के नाम से शाया हो चुका है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए। जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई।

सामीन, अभी आप सुभाष आनंद की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था हजरत अमीर खुसरो का। सामीन, हिंदी शेर व अदब को फरोग देने में मुगल बादशाहों की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। हिंदी जबान ने फारसी जबान से असर कबूल किया। अकबर के अहद में हिंदी शायरी का नया रूप निखर कर सामने आया। दरबार से वाबस्ता शोरा में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम खसूसियत से

सामिन प्रेम चंद हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के अदीब हैं। उन्होंने कहानियाँ, अफसाने, नावल तख्लीक किए। उनकी ज़बान सादा, सलीस और आम है। उन्होंने देही ज़िंदगी पर खूब लिखा है।

सामीन, अभी आप दिनेश प्रभाकर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था महेश चंद्र नक्श का। सामीन, दुष्यंत कुमार त्यागी एक मशहूर शायर हैं। उन्हें जदीद हिंदी गज़ल को अवामी एहसासात, समाजी मसाइल और सियासी शऊर से जोड़ने वाले अहम शोरा में शुमार किया जाता है। उन्होंने ड्रामे भी लिखे और नावल भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में गज़ल को एक नई पहचान दी है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए।

सामेईन, जदीद शोरा में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का नाम आता है, जिनकी गज़लों में माजी की सेहतमंद रिवायतों के साथ उनके अहद की भी अक्कासी है। उनका लहजा मुनफरिद है। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब का मुतालिया किया। हिंदू देवमाला उनके अंदर सराइयत किए हुए थी। हिंदी संस्कृत अदब से उन्हें गहरी वाकफियत थी। उनकी शायरी का लब लहजा सुकून, नरमी और ठंडक से साफ पहचाना जाता है। हिंदी के नर्म और शीरी अल्फाज भी बड़े सलीके से उर्दू में इस्तेमाल किए हैं। तबीयत जब अपनी घबराती है सनसान रातों में, तबीयत जब अपनी घबराती है सनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। ज़िंदगी क्या है आज से ऐ दोस्त, ज़िंदगी क्या है आज से ऐ दोस्त, सोच लें और उदास हो जाएं।

आमीन। अभी आप शोभना राव की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था फिराक गोरखपुरी का। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

0: रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत, सुव्यवस्थित और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के पनबिजली बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी पंखुड़ी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी खो जाए तो पूरे कमल की सुंदरता कम हो जाती है। श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। गृह मंत्री ने आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। राजभाषा विभाग की मासिक पत्रिका राजभाषा भारती के विशेष स्मारक अंक का विमोचन किया गया, जो वंदे मातरम पर आधारित है। इस अवसर पर 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया, भारतीय मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन ऐप का उद्घाटन किया गया और भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित देश का पहला डेटा सेंटर भाषा कुंज भी जारी किया गया। 28 सितंबर को होने वाले त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की ग्राम समिति के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 74 कंपनियां राज्य में पहुंच गई हैं। देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security and welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology and critical minerals could become a hurdle to progress. India hosted the summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, placing people-centered development and the interests of the Global South at the heart of its presidency. The most significant outcome of the BRICS summit was the adoption of the New Delhi Declaration, which outlined the shared position on major geopolitical and economic issues. On the situation in West Asia, BRICS leaders called for maximum restraint, dialogue and diplomacy and stressed the need to protect civilians and civilian infrastructure. The leaders strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and reiterated their commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism. The government has said that the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने का। सबसे पहले इस क्रम में हमारे खोए व्यक्ति का नाम है काजल। अंतिम बार इन्हें ग्राम तुगलपुर में देखा गया है। आयु 24 वर्ष है। कद 5 फुट 5 इंच है। शरीर की बनावट आँख नाक कान औसत हैं और जिस्म मजबूत है। ये घर से काम पर निकली थी और अभी तक घर वापस नहीं आई है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना नॉलेज पार्क, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रविंद्र। इनके पिता का नाम है रामकेश। अंतिम बार इन्हें सदर सराय 4:06 पर नोएडा में देखा गया है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। आयु 26 वर्ष है। कद 5 फुट 6 इंच है। बैंक के काम से ये घर से बाहर गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। यदि इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 39, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं।

खोए व्यक्ति का नाम है सोनू, इनके पिता का नाम है भुवनेश। अंतिम बार इन्हें ग्राम सियाना में देखा गया है। आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं और रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना इकोटेक 3, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है ममता गुप्ता। अंतिम बार इन्हें दिनांक 23/3/2026 को हरोला सेक्टर 5 नोएडा में देखा गया है। आयु 38 वर्ष है। शरीर की बनावट मजबूत शरीर है। कद 5 फुट 4 इंच है। विशेष पहचान इनके बाएं हाथ पर मुकेश लिखा हुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना फेस 1, नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है निक्की। इनके पिता का नाम है भूपेंद्र। निवासी ग्राम खटाना, थाना जारजा, गौतम बुद्ध नगर। उम्र 24 वर्ष है। अंतिम बार इन्हें 30/3/2026 को देखा गया है। इन्होंने टी शर्ट, टॉप व पजामा पहन रखा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, कोतवाली जारजा, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सपना। इनके पिता का नाम है राकेश। निवासी सदरपुर। अंतिम बार इन्हें 24/3/2026 को सेक्टर 44 के पार्क में देखा गया है। आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट दुबला शरीर है। कद 5 फुट है। विशेष पहचान निचले सामने के दांत टेढ़े हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 39, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रितु। पिता का नाम है अगनपाल। अंतिम बार इन्हें इनके घर पर ही देखा गया है, सेक्टर 63 नोएडा में। आयु 22 वर्ष है। शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत है। कद 5 फुट है। ये अपने घर से बिना बताए चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 63, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और वक्त है अब कार्यक्रम युव वाणी का।

0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का यह खास कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंजल।
1: और मैं हूं हार्दिक। आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए है जानकारी सेहत इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें।
0: कार्यक्रम की शुरुआत होगी गणेश चतुर्थी से जुड़े खास विषय के साथ।
1: इसके बाद होगी बात हमारी भाषा और हमारी पहचान की, क्योंकि आज ही है हिंदी दिवस। जानेंगे हिंदी से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें।
0: सेहत का ख्याल रखते हुए हमारे हेल्दी डाइट सेगमेंट में बात होगी बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली की।
1: इतिहास के पन्नों से भी चुनकर लाएंगे कुछ छोटी छोटी और काम की जानकारियां।
0: और कार्यक्रम के आखिर में होगा क्विक बस, जहां मिलेगी कुछ छोटी

0: छोटी लेकिन मजेदार और काम की जानकारियां।
1: तो तैयार हो जाइए एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जिसमें जानकारियां भी हैं
0: और दिलचस्प भी है।
1: और आपका साथ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, पर इससे पहले सुनते हैं ये गाना।

0: की आवाज, गणपति की भव्य प्रतिमा, फूलों की सजावट और चारों ओर गूंजता एक ही जयकारा, गणपति बप्पा मोरया।
1: गणेश चतुर्थी आते ही जैसे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। घरों से लेकर पंडालों तक हर जगह उत्सव और भक्ति का रंग दिखाई देता है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से ही क्यों की जाती है? उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन उनके स्वरूप का हर हिस्सा अपने भीतर एक खास संदेश भी समेटे हुए है।
1: गणेश जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मान्यता है कि माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें अपने द्वार की रक्षा का दायित्व दिया।
0: जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उसे गणेश जी के जीवन की दिशा काफी बदल दी।
1: माता पार्वती के आग्रह और देवताओं की प्रार्थना के बाद गणेश जी का नया जीवन मिला और हाथी का सिर धारण करने वाले गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य बने।
0: शायद यही वजह है कि गणेश चतुर्थी सिर्फ उनके आगमन का उत्सव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, बुद्धि और विघ्नों पर विजय का प्रतीक भी है।
1: और इसी उत्सव की ऊर्जा को महसूस करते हुए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इस माहौल की ओर शुभकामना बढ़ा देगा।

0: निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां भारत भाषा को सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, हमारी पहचान और उन्नति से जोड़ती भी हैं।
1: और शायद यही वजह है कि हिंदी की कहानी सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जो अपनी विविधता के बीच एक साझा आवाज की तलाश रहा था।
0: और शायद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार भी किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है।
1: इस सफर में बेहोहर राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और काका कालेकर जैसे लोगों ने हिंदी के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात शायद यह है कि उद्देश्य सिर्फ हिंदी को आगे बढ़ाना नहीं था, भाषा के जरिए एक विशाल और विविध देश के बीच संवाद और एकता को मजबूत करना भी था।
1: और संविधान का अनुच्छेद 351 भी हिंदी को दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों, रूप और शैली को आत्मसात करते हुए समृद्ध करने की बात करता है।
0: यानी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग आवाजें, लेकिन भावना एक। इसी के साथ एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। सरहद पर जवानों की हुंकार है हिंदी, हर भारतीय के दिल का प्यार है हिंदी, तिरंगे की आन और भारत की पहचान, मेरे देश की मिट्टी का संस्कार है हिंदी। दुनिया चाहे कितनी भी भाषाएं सिखा दे, पर दिल से निकले जो वो आवाज है हिंदी मेरी जान।

0: गान है हिंदी।
1: वाह, और इसी भावना को संगीत ने बेहद खूबसूरती से आवाज दी।
0: तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला बहुत ही मजेदार संगीत।

हिंदुओं को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

0: चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी मन से माइक्रोफोन तक, जहां हमारे साथ मौजूद हैं तुषार चौधरी IAS। उनके सफर, अनुभवों और सफलता से जुड़ी इस प्रेरणादायक बातचीत में उनसे बातचीत करेंगी हमारी साथी शिवी सक्सेना।
1: नमस्कार श्रोताओं, एक नदी अपना रास्ता एक दिन में तय नहीं करती, वह हर रोज चट्टानों से टकराती है, बहती है, आगे बढ़ती है और अंततः अपनी मंजिल तक

0: पहुंच जाती है। सफलता भी इसी निरंतर प्रयास का दूसरा नाम है। मन से माइक्रोफोन तक के आज के सेगमेंट में हमारे साथ हैं आईईएस तुषार चौधरी जी, जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4 अर्जित की तथा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आईआरएमएस के लिए चयनित हुए। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुषार जी। तुषार जी, मुझे विश्वास है कि आपने अब तक कई इंटरव्यू दिए होंगे जिनमें आपकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात हुई होगी, पर आज के अपने युवा दोस्तों के साथ हम उन उपलब्धियों से परे एक व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो सभी श्रोतागण जानना चाहेंगे, जब परिणाम आया और आपने ऑल इंडिया रैंक 4 देखी तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और यह खुशी आपने सबसे पहले किनके साथ साझा की?
1: जी शिवी, सबसे पहले इस डीप इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने यंग लिसनर से आज ये साझा करना चाहूंगा। उस समय मैं एमसीआर हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में एक सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस समय मैं अपनी ट्रेनिंग में था। उस वक्त शाम का समय था और हम फुटबॉल खेल रहे थे, तभी तुरंत अचानक से मेरा एक मित्र रुक जाता है और कहता है कि लगता है शायद रिजल्ट आ गया है, और सब उसकी ओर देखते हैं, बॉल वहीं छोड़ के उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट तो वाकई में आ गया है, और फिर वो बताता है कि आपकी AIR 4 आई है। तो सब ये मानू कि खुशी से झूम उठते हैं और मैच छोड़ के सब कहते हैं कि चलिए आज तो पार्टी होगी। वो पल बहुत यादगार रहेगा। जी,
0: तो बहुत ही स्वीट सरप्राइज की तरह ये आपके सामने आया। तुषार जी, हमारे साथियों को सिविल सर्विसेज और कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारियों में अंतर के बारे में बताएं।
1: जी, मैंने IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद लगभग 4 से 5 महीना इंटेल टेक्नोलॉजीज, जो कि ग्राफिक हार्डवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल पे, जैसे आप माने कि जो VLSI सेक्टर है, आजकल जो AI के जमाने में बहुत भूमिका अहम है उसकी, उसमें काम किया। फिर वहां से 5-6 महीने के बाद फिर मैंने UPSC की ओर अपना रुख रखा। तो मेरा मानना यह है कि कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट साइड, आप जिधर भी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। परंतु अगर हम जैसे कॉरपोरेट की बात करें, तो इंटेल में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हमें शुरुआती दिनों में, जैसे कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर अगर ज्यादा हमारा रुझान है, तो मुझे इंटेल टेक्नोलॉजीज, NVIDIA, AMD, ये सारी जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का आपको एक्सपोजर मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, खासकर की इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इसमें आपको शुरुआती पहली ही पोजीशन से एक लीडरशिप स्किल डेवलप कराने का अवसर सरकार देती है। इफ आई हैव टू कंक्लूड इट, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में आपका रोल एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ग्रो होता है, और कॉरपोरेट में, खासकर की केवल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपका रोल एज अ प्योरली स्पेशलिस्ट के रूप में डेवलप होता है।
0: बहुत से युवाओं के लिए IIT एक सपना और मंजिल होती है, लेकिन आपके लिए वह एक पड़ाव की तरह था। आप किस तरह के विद्यार्थी थे और IIT ने आपको किताबों से आगे जीवन के बारे में क्या सिखाया?
1: IIT ने जीवन के बारे में मुझे सब कुछ सिखाया। मैं याद करता हूँ वो दिन जब मैं IIT दिल्ली में बीटेक के लिए गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हम यही देखते थे कि ये कॉलेज का कैंपस है, ये इमारतें हैं, परंतु कुछ महीने बीतने के बाद ये समझ में आता है कि किसी भी संस्था या किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे अहम भूमिका होती है उसके ह्यूमन रिसोर्स की, जो कि हो गए हमारे प्रोफेसर्स, हमारे बैचमेट्स से लेके हमारे स्टाफ, पूरा जो कॉलेज का होता है। सबसे बड़ी लर्निंग्स मुझे अपने सहपाठियों से हुई। इंडिया के अलग अलग जगह से IIT JEE एडवांस के नाम से जो एग्जाम जाना जाता है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब बच्चे आते हैं, आप किसी भी अपने साथी में कोई एक कॉमन पैटर्न नहीं देखते। आप उससे सबसे बड़ी सीख ये लेते हैं कि हर इंसान का तरीका सीखने का और परफॉर्म करने का एग्जाम में और लाइफ में अलग होता है। तो देर इज नो वन सिंगल कट डेफिनेशन फॉर सक्सेस, ये मुझे अपने कॉलेज से सीखने को मिला।
0: जी तुषार जी, हमारे युवा साथी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी?
1: अगर हम इस एग्जाम को देखें, इंजीनियरिंग सर्विसेज को, तो उसकी हमें स्टेजेस समझनी होंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर GS का, दूसरा पेपर हमारा जो टेक्निकल है। उसी तरह मेंस में हमारे 2 पेपर्स हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, और फाइनली इंटरव्यू होता है। तो टिप्स ये रहेंगी, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपको हर पड़ाव पे मौके मिलेंगे मार्क्स स्कोर करने के, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं। दूसरा ये रहेगा कि सबसे जो आपकी कोर सोर्स रहेगी, जो सबसे अहम सोर्स रहेगी, वो आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट को देखें, इलेक्ट्रिकल

0: में देखें, पावर सिस्टम, मशीन, सिग्नल सिस्टम, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं 1980s 1990s की जो किताबों में होते थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वही सवाल आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स नेवर चेंज। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझें कि अगर हमसे एग्जामिनर कोई सवाल बनाना चाहेगा, कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन का एंगल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में रहता है, उस कारण से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि जब आपने ये समझ लिया कि हर पड़ाव अहम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, तीसरा रहेगा इसमें रिवीजन और फीडबैक एनालिसिस का। मेरे साथीगण जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं वो समझेंगे कि एक फीडबैक लूप होता है, तो हमको टेस्ट को एज अ फीडबैक लूप यूज करना है। ये कर सकते हैं कि आपने एक बेस कंटेंट पढ़ा, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और टेस्ट को एज अ फीडबैक लूप को आप बार बार चलाते रहेंगे, बार बार निरंतर रिविजन करते रहेंगे, तो इस तरीके से आपकी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। इसी प्रकार फाइनली इसका कंक्लूजन आपको एग्जाम में निकल के आएगा।
1: तुषार जी, अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इस राउंड में आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका जवाब एक सेंटेंस में देना है। कॉफी या चाय?
0: जी, मैं कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ।
1: किताबें या नोट्स?
0: नोट्स।
1: थ्योरी या न्यूमेरिकल?
0: इंजीनियरिंग सर्विसेज के रुख से देखें तो न्यूमेरिकल।
1: आईआईटी लाइफ या सर्विस लाइफ?
0: ये बहुत मुश्किल सवाल है। आईआईटी लाइफ की अपनी एक अहम भूमिका है और सर्विस लाइफ की अपनी एकदम अहम भूमिका है। मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह एकदम ठीक है।
1: AIR 4 एक सेंटेंस में।
0: पहले तो लगा था कि ये इम्पॉसिबल है, बट जब हासिल हो गया तो भी आज भी यकीन नहीं होता है।
1: हमारे यंग लिसनर्स के लिए आपका कोई संदेश?
0: जी, एक सक्सेस और फेलियर को लेके मेरा एक संदेश जरूर रहेगा। हम देखते हैं समाज में बात होती है कि अगर आपने कोई एग्जाम निकाल लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, या कोई आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तो आपको एक फेलियर की माला पहना दी जाती है। परंतु मेरी लर्निंग ये रही है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स फेल होते हैं, परंतु बस फर्क दोनों में इतना है कि कोई एग्जाम वाले दिन पास होता है और कोई एग्जाम वाले दिन फेल होता है। इसका कंक्लूजन ये है कि कभी आप किसी एक परीक्षा में फेल भी होते हैं तो आप ये समझें कि वो परीक्षा उस समय ले गई जिस समय आपकी तैयारी नहीं थी, पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।
1: जी, सक्सेस और फेलियर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए धन्यवाद। तुषार जी, आज हमारे साथ जुड़ने और अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। डियर लिसनर्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपनी प्रतिभा की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कम आंकने लगे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, सपनों की ऊंचाई नहीं उन्हें पाने का हौसला ही इंसान की पहचान बन जाता है। इसी प्रेरक संदेश के साथ मैं शिवी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सुनिए ये मधुर संगीत।

0: तो चलिए बढ़ते हैं एक खूबसूरत सी पेशकश की ओर, जहां कविता के जरिए हम महसूस करेंगे अपने भारत को। हम सुनेंगे आस्था त्रिपाठी को।
1: जय हिंद। मैं आस्था त्रिपाठी आप सभी के बीच आज अपनी कुछ लयबद्ध कविताएं प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी पहली कविता है हमारा ये तिरंगा। हमारा ये तिरंगा जो गगन में मुस्कुराता है, हमारा ये तिरंगा जो गगन में मुस्कुराता है जिसके चक्र में मुस्कान वो भारत बनाता है, जिसके चक्र में मुस्कान वो भारत बनाता है। जरा इतिहास को देखो यहाँ क्या क्या महकता है, भगत आजाद है कितने ये कह अंग्रेज थकता है। यहाँ कोई नरम दिल का है कोई गर्म बुद्धि का, देते ज्ञान देते एकता का आत्मशुद्धि का। के लफ्ज कुछ ऐसे हैं। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का, आजादी मांगी सब रंग ने दिलाया लाल रंग ने था। गवाया है करोड़ों रकम अपने ज्ञान और धन का, आजादी मांगी सब रंग ने दिलाया लाल रंग ने था। जख्म को जख्म से जोड़े उसे घायल समझते हैं, हाँ उस खून की घनी बारिश पे खुद बादल भी कहते हैं। हूँ खुशकिस्मत की मैं जो ऐसी भू पर राज करता हूँ, कहे रस खान थे जो कृष्ण की महिमा वो कहता हूँ। गुरु गोविंद के आगे मैं अब अरदास करता हूँ, हाँ ये विश्वास है मुझको मैं ये आगाज करता हूँ। ये भारत है विविधता का या ये त्रिकोण मीति है सभी हैं।

ही हो काली हो या खद्दर, है ये सारी एक माटी ही, हो पूर्वी हो या पश्चिम, है ये सबकी एक ख्याति ही, जिन्हें कुछ ना समझ है बस पता है एक भारत ही, जिन्हें कुछ ना समझ है बस पता है एक भारत ही। तो ये थी मेरी पहली कविता, और अब बढ़ते हैं मेरी दूसरी प्रस्तुति की ओर, जिस कविता का शीर्षक है भारत की माटी।

ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी उद्भवी माटी को हम भारत ही कहते हैं, जहाँ खुदीराम ने भी जान गवाई मुस्कुरा कर, खुद आजाद ने कुर्बानी दी गोली चला कर, ऐसी क्रांति

चोपड़ा नीरज दिला रहा है, विकसित देश को बनाने में सारे धुरंधर करेंगे चांद को भी पार ये सारे दिवाकर। ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं, ऐसी अग्रसर माटी को हम भारत ही कहते हैं। जन कल्याण में भी इस युवा के भाग अच्छे हैं।

0: है, ध्येय सबका एक पाया है। ऐसी मातृभूमि पाके हम तो धन्य ही है, यहाँ विभेद में भी भेदता अनन्य ही है। ऐसी सौम्य सुंदर माटी को भारत ही कहते हैं, ऐसे विविधता के देश को भारत ही कहते हैं, विविधता में भी एकता को हम भारत ही कहते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ मेरी कविताओं के साथ इतने प्यार से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।
1: वाह, आस्था की इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद हम भी चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी टुडे इन हिस्ट्री की ओर। तो हार्दिक, क्या तुम जानते हो 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में तेल निर्यातक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा बदल दी। भारत के संदर्भ में ओपेक ने देश की औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास में ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके रीढ़ की हड्डी का काम किया है। इस भरोसेमंद साझेदारी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनते में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया।
1: और तो और, क्या तुम्हें पता है, आज ही के दिन 14 सितंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमरीकी कांग्रेस में भाषण दिया था। ये भारत और अमरीका के मजबूत रिश्तों के संकेत में था और भारत की बढ़ती पहचान दिखाता था। एंजल, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट क्विक बज की तरफ। ब्रिक्स 2026 में भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक लीडरशिप की मजबूती दिखाई। समिट में लोकल करेंसी ट्रेड और यूपीआई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया, साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। कुल मिलाकर भारत ने अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को ब्रिक्स के एजेंडा में प्रमुख स्थान दिलाया। इसके साथ सुनिए ये मधुर संगीत।

0: उम्मीद है युववाणी का आज का ये प्रोग्राम आप सभी ने एंजॉय किया होगा। हमें हमेशा आपके फीडबैक्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें ईमेल कर सकते हैं yuvavanifeedback@gmail.com पर, yuvvanifeedback@gmail.com पर। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगी। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंजल
1: और मैं हूं आपका अपना होस्ट हार्दिक।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत, सुव्यवस्थित और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के पनबिजली बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की

0: संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन में कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। ये रूपरेखा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेशानुसार तैयार की गई है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन प्रो सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said if even one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the 2-day Hindi Divas 2026 and the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: The Union Home Minister said that though India has many languages and dialects, the Indian sentiment and the voice of the nation must remain one. He said linguistic diversity is a strength of the country and Hindi can serve as an effective bridge of communication among the various Indian languages, thereby strengthening national unity. He also lauded Maharashtra for its multilingual culture. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security and the welfare of all nations. During the 2-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals could become a hurdle to progress. India hosted the summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, placing

0: लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: नमस्कार। लोक संगीत में हम देखिए मंजीत बहन अपने भाइयों को लोकगीत, भजन, उपदेश और बहुत सारी चीज़ें सुनवाते हैं। और इसके साथ ही जब कोई त्यौहार होता है तो हम उससे भी रिलेटेड सारी चीज़ें सुनवाते हैं, उनको भजन सुनवाते हैं। और इसी तरह आज जैसे गणेश चतुर्थी है
0: जी
1: तो गणेश चतुर्थी पे
0: बिल्कुल। और आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी का त्यौहार जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, और
1: जी
0: खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका के अलावा अन्य जो हमारे जो राज्य हैं उनमें भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और जब हम गणेश चतुर्थी या कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो हम मिलजुल कर मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ऐसे ही हम आज लेकर आए हैं कुछ भजन, कुछ लोकगीत जो कि धूमधाम से भरे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन कृष्णपाल सिंह और राठौर की आवाज में।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे भजन कृष्णपाल सिंह राठौर की आवाज़ में। और देखिए, हम अपने भाइयों को लोकगीत भी सुनवाएंगे और उत्साह से भरा ये जो त्यौहार है नाचते कूदते मनाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारे पास बहुत सारे लोकगीत हैं। और जैसे कि आज हिंदी दिवस भी है
1: बिल्कुल
0: मंजीत
1: बिल्कुल।
0: भाई।
1: और जैसा कि आज गणेश चतुर्थी तो है ही है, और जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। और
0: जी
1: आज के दिन कार्यालयों के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी शुरुआत हो जाती है।
0: बिल्कुल, ये तो है देखो। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम लोग आम भाषा में उसको बोलते हैं, और कहते हैं ना कि भाई इसको आसान

0: समझ लेता है हर आदमी,
1: जी
0: और जैसे हमारी महिलाएं हैं और वो जो हिंदी में लोकगीत गाती हैं
1: बहुत ही
0: तो वो
1: खूब।
0: बहुत ही मजेदार होते हैं। और कहते हैं पढ़ना पढ़ना भी एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, और जो हम हिंदी में बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। मंजीत बहन,
1: जी
0: तो हमारी जो बहनें हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो उनसे उनका ये लोकगीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

देखिए, ये तो होगी पढ़ाई लिखाई की बात, लेकिन मौज मस्ती और जो झूमना गाना बजाना जो हमारा चलता रहता है, कोई भी त्योहार है उसमें बराबर चलता रहता है, तो उसको भी हमें लगातार बजाते रहना है और आगे बढ़ना है पुष्पा गोसाई और उनके साथियों के साथ। तो सुनते हैं पुष्पा गोसाई और साथियों से।

देखिए, अभी हमारे भाई सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और साथियों की आवाज़ में। ये बहुत ही प्यारा सा लोकगीत और भजन भी था इसमें थोड़ा थोड़ा। और आगे बढ़ते हैं और प्रियंका शर्मा की आवाज़ में भी सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे प्रियंका शर्मा की आवाज़ में प्यारा सा लोकगीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: नमस्कार। और इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मंजीत कौर और
0: वंदना,
1: कोदी
0: आपसे
1: जैन।
0: लेते हैं विदा।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनिए दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मेरे सहयोगी
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं।
2: अभिनव और मैं आज आपको लेकर चलेंगे खेल जगत की उस पूरी पूरी राइड पर जहां पर हम आपको सुनवाएंगे खेलों से जुड़ी हुई बहुत अहम खबरें, जहां पर हम बात करेंगे टेनिस की, साथ ही साथ बात होगी आर्चरी वर्ल्ड कप में हुई उपलब्धि की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया की जो महिला टीम है एशिया कप में उन्होंने जीता है खिताब, साथ ही साथ एशियन गेम्स पर भी होगी हमारी नजर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने दिखा दिया है कि भारत की महिला टीम को धुरंधर यूं ही नहीं कहा जाता। और अब जिस तरीके से भारतीय महिला टीम एक के बाद एक आयाम लिख रही है, अपनी जीत के जो खिताबी जो एक किताब लिख रही है, ये काबिले तारीफ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एशिया कप ट्रॉफी की। क्रिकेट के मैदान पर जब इरादे मजबूत होते हैं, बल्लेबाजों के बल्ले से रन बरसते हैं और गेंदबाज विपक्षी टीम को टिकने का मौका नहीं देते, तो जीत का रंग और भी गहरा हो जाता है। एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने कुछ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत ने 72 रनों की बड़ी जीत दर्ज करते हुए 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने इस फैसले को पूरी तरीके से सही साबित कर दिया। भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी की, जो महिला T20 एशिया कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही है। शेफाली वर्मा ने महज 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो एशिया कप के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक रहा। उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रही। वहीं स्मृति मांधना ने भी 39 गेंदों में 59 रनों की तेज तरार पारी खेली। अब श्रीलंका के सामने था 184 रनों का बड़ा लक्ष्य, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

0: क्रांतिगौर ने शुरुआती ओवर में ही विकेट लेकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलवाई। इसके बाद चमारी अट्टपट्टू और रेशमी गुणरत्ने ने 58 रनों की साझेदारी जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस साझेदारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए। तो एशिया कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में दबाव झेलना हो या निर्णायक मौके पर दमदार प्रदर्शन करना, टीम इंडिया हर मोर्चे पर तैयार है। स्मृति शेफाली के बल्ले की चमक, दीप्ति और श्रीचरणी की धारदार गेंदबाजी, पूरी टीम के शानदार खेल ने भारत को दिलवा दिया 8वां एशिया कप का खिताब। और इस खुशी में क्या कह रहे हैं भारतीय टीम के कोच अमोल मजुमदार, आइए सुनते हैं।
1: टूर्नामेंट इज ओवर, वी आर द चैंपियंस, दैट्स गुड इनफ। इट वाज ऑन द बिग बोर्ड दैट इंडिया चैंपियंस ऑफ एशिया कप 2026 एंड दिस टूर्नामेंट इज ओवर, ऑफिशियली ओवर फॉर अस। वी आर हैप्पी दैट वी हैव टर्नड आउट टू बी चैंपियंस, नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू द एशियन गेम्स।
0: तो इसके बाद एशियन कप पर, एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स पर भी जरूर यहां पर नजरें हैं भारतीय टीम की, लेकिन एक जो यहां पर सेटबैक रहा वो रहा टीम श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है वो लास्ट टाइम चैंपियन थी और श्रीलंका ने मुकाबले में बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने कुछ भी नहीं हो पाया और ये जो मैच है ये श्रीलंका की टीम हार गई। लेकिन श्रीलंका की टीम की जो कैप्टन है चमारी अट्टपट्टू, उन्होंने किस तरीके से बात की बाद में मैच हारने के बाद, आइए सुनते हैं।
2: बेसिकली वी आर नॉट प्लेइंग आवर बेस्ट क्रिकेट टुडे, ऑल थ्री डिपार्टमेंट स्पेशली बॉलिंग इन द पावर प्ले वी आर नॉट एक्सिक्यूट आवर प्लान्स एंड दे आर कमिंग विद गुड प्लान्स अगेंस्ट अस एंड दे एक्सिक्यूट देयर प्लान्स बट वी स्ट्रगल लॉट, स्पेशली द कंडीशन इज रियली गुड फॉर द बैटर्स, दे आर कमिंग विद good positive mindset and they score more runs in power play. So and after Shifu and Smriti got out, we had a little bit good chance, but then we struggled a little bit and we dropped a few catches and we give more extra runs. So you know, this kind of final 180 is not easy to chase. I know that extra 30-40 runs, so it's cost us for the results.
0: तो बिल्कुल, जब यहाँ पर कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है और ऐसे में जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास हो, इतना बड़ा खिताब दांव पर हो, तो जरा सी भी चूक जो है ना वो किसी भी खेमे में खलबली मचा सकती है। लेकिन ये खलबली जो मची श्रीलंका में, फायदा मिला इंडिया को। क्रिकेट की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी अभिनव के पास।
3: बिल्कुल, नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को खेले गए पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अफगानिस्तान को 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन तक सीमित रखा। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और एक समय उसका स्कोर 43 रन पर 5 विकेट था, लेकिन अजमतुल्ला उमरजई ने 44 गेंदों पर नाबाद 64 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से हर्षदीप सिंह ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक एक सफलता मिली। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत में संजू सैमसन का विकेट गवाया, लेकिन श्रोताओं, अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 32 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इसके बाद ईशान किशन ने 33 गेंदों पर 42 रन बनाकर पारी को मजबूती दी और भारत ने केवल 13.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शेर सैयर और तिलक वर्मा ने टीम को जीत तक पहुंचाया। अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया और सीरीज में शानदार शुरुआत की। मैच जीतने के बाद भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कल के मुकाबले और भारतीय बल्लेबाजी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: So we have been used to playing in such pitches and we know the dimensions of Delhi. It's not a big ground. So there are certain lengths that you have to hit and we were initially given the stats. Okay, so these lengths work in this ground and these lengths don't work in this ground. So we stuck to our plans and it worked well. While sitting on top of the dressing room, I was just telling someone that against our team batting lineup, you can't bowl spin. So if you bowl spin against our batting lineup, they're just going to smack left, right and center. We are just so used to playing spinners. And so, yeah, one of the best batting lineups we have, our top 8 batsmen. Anyone can take on any spinner in this world.

0: I've personally bowled against them, played against them. I know how hard it is. So yeah, I feel for the spinners. Yeah.
1: अब सीरीज के बाकी दो मैचेस 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे।
2: तो यहाँ पर क्रिकेट की खबरों को अब विराम देते हैं और क्रिकेट के मैदान से निकल कर का अब चलेंगे हम यहाँ पर टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर जो मुकाबले हैं यूएस ओपन के वो आ चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट के साथ तैयार हैं मेरे सहयोगी अभिनव।
1: बिल्कुल, यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर जेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को 4 सेटों के रोमांचक मुकाबले में 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जेवरेव ने शुरुआत से ही अपनी सर्विस और बेस लाइन खेल के दम पर दबाव बनाए रखा और पहला सेट 6-3 से जीत लिया। दूसरे सेट में शेल्टन ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन जेवरेव ने टाई ब्रेक में 7-2 से बाजी मारकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली। हालांकि शेल्टन ने तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 5-7 से सेट अपने नाम किया, लेकिन जेवरेव ने निर्णायक चौथे सेट में फिर नियंत्रण हासिल किया और 6-2 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यह जेवरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी साल फ्रेंच ओपन जीता था और विंबलडन के रनर अप रहे थे।
3: First thing I want to start off with Ben. Ben, you're an incredible player, incredible person. This was your first Grand Slam final, but I already told you you're going to be back here many, many more times. And if I would have to bet all my money on it, I would bet that you would lift this trophy one day. Then I want to thank my team. We went 30 years without winning a Grand Slam title, and now we won two in a span of 3 months. So I think God has seen how hard we worked, how much we suffered, how much pain we went through. I think 2026 is the outcome of all the years that happened before. So thank you guys. See you guys.
1: 6 साल पहले 2020 में यूएस ओपन फाइनल में मिली हार के बाद जेवरेव के लिए ये जीत खास तौर पर यादगार रही। वहीं पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे शेल्टन का अभियान भी ऐतिहासिक रहा।
3: To the fans who showed up today, the fans at home, the people who've been here all week, the people who stayed till 4 in the morning. You guys drove me. You guys brought me to the place that I'm here today, the position that I want to be in the finals of these tournaments. I'm just getting started and I'll be back here again. Thank you so much.
1: महिला एकल में कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने 2 बार की गत चैंपियन आरेना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता। इस तरह 2026 यूएस ओपन में पुरुष और महिला दोनों एकल वर्गों को नए चैंपियन मिले और टूर्नामेंट ने टेनिस में नई पीढ़ी के उभार की तस्वीर पेश की।

0: टेनिस कोर्ट से निकल के चलेंगे सीधा आर्चरी के मैदान में, जहां पर जो निशाने हैं भारत के फेवर में आए हैं, और आर्चरी टीम ने कर दिया है एक बहुत बड़ा उलटफेर, कारनामा किया है यहाँ पर धीरज ने। क्या है पूरी रिपोर्ट, चलते हैं अभिनव के पास।
1: धीरज बॉम देवरा ने कविता मेक्सिको के साल्टिलो में आयोजित 2026 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में इतिहास रचते हुए पुरुष रेकर व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत के लिए यह जीत इसलिए बेहद खास रही क्योंकि धीरज इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रेकर तीरंदाज बन गए। फाइनल में उनका सामना जापान के जूनिया नाकानिशी से हुआ, जहां दोनों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और 5 सेट के बाद स्कोर 5-5 से बराबर था। निर्णायक शूट ऑफ में धीरज ने शानदार दबाव प्रबंधन दिखाते हुए 10 अंक का निशाना लगाया, जबकि नाकानिशी 9 अंक ही हासिल कर सके और भारतीय तीरंदाज ने मुकाबला 6-5 से अपने नाम कर लिया।
2: Oh, that's a very, very good shoot-off arrow from Dhiraj Bommadevara, despite the shakiness. And that is into the nine, and Dhiraj Bommadevara from India has taken the title of the World Cup final in 2026, and that is an astonishing win for the man who is known as a giant killer.
1: इससे पहले धीरज ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के बर्किम टूमेर को 7-1 और सेमीफाइनल में फ्रांस के जीन चार्ल्स वलाडोंट को 7-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। धीरज की ये उपलब्धि भारतीय तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक है। 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में पदक से चूकने के बाद उन्होंने साल्टिलो में अपने शानदार प्रदर्शन से आखिरकार सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। वह 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे और सीजन के तीसरे चरण में अंतालिया में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीतकर उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। साल्टिलो में

0: उनकी निरंतरता, निर्णायक क्षणों में सटीक निशाना और शूट ऑफ में 10 अंक का परफेक्ट शॉट भारतीय तीरंदाजी की बढ़ती ताकत का शानदार उदाहरण बना।
1: तो अब एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स का काउंटडाउन लगातार जारी है और सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खेलों की जो रोमांच से भरपूर है। चलिए सुनते हैं ये विस्तृत जानकारी। एशियन गेम्स की तैयारी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे जापान के आईची नागोया में होने वाले खेलों की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। एथलेटिक्स के ट्रैक से लेकर समुद्र की लहरों तक और मैदान पर तेज रफ्तार रग्बी मुकाबलों तक एशियन गेम्स हमें खेलों की एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां हर सेकंड, हर मीटर और हर पॉइंट मायने रखता है। आज हमारी एशियन गेम सीरीज में बात होगी 3 अलग अलग लेकिन बेहद रोमांचक खेलों की, एथलेटिक्स, सेलिंग और रग्बी 7S की। सबसे पहले बात उस खेल की जिसे अक्सर मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स एशियन गेम्स में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक रहा है। हांगझोऊ 2023 में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल थे। कुल पदकों के लिहाज से एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा था। भारतीय टीम अब एक बार फिर बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी। इस टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर और तेजस्विन शंकर जैसे नाम शामिल हैं। गुलवीर सिंह ने ग्लासगो में 10,000 मीटर में रजत पदक और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था, जबकि मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में रजत और तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वहीं अविनाश सांबले, तजिंदर पाल सिंह तूर और पारुल चौधरी जैसे एशियन गेम्स के मौजूदा चैंपियन भी अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। शॉटपुट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। तूर 2 बार के एशियन गेम्स चैंपियन ही नहीं बल्कि 2018 और 2023 दोनों एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हांगझोऊ में उन्होंने 20.36 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया था। अब आईची नागोया में तूर के सामने इतिहास बनाने का मौका है, लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स का शॉटपुट गोल्ड जीतने का।
2: भगवान की दया बनी रहे इसी तरह से जैसे पहले से बनी आ रही है, तो मुझे लगता है भी मैं अच्छा करूं।
1: हालांकि इस बार भारतीय एथलेटिक्स टीम को नीरज चोपड़ा की कमी जरूर खलेगी। उनकी गैर मौजूदगी में रोहित यादव पुरुषों के जैवलिन थ्रो में भारत की चुनौती संभालेंगे। रोहित ने हाल ही में 87.68 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। महिलाओं में ज्योति याराजी, पारुल चौधरी, शैली सिंह, सीमा कालीरामना, निहारिका वशिष्ठ और कई अन्य खिलाड़ी भारत की पदक उम्मीदों को मजबूत करेंगी। महिला ट्रिपल जंप में भारत की निहारिका ने 2026 सीजन में लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया। अप्रैल में उन्होंने 13.41 मीटर की छलांग लगाकर एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन मार्क पार किया था। इसके बाद मई में निहारिका ने 13.64 मीटर की छलांग लगाकर अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। यही उनका 2026 का अब तक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड भी है। अब अपने एशियन गेम्स के प्रदर्शन के लिए निहारिका कहती हैं,
3: देखिए एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
1: आईची नागोया के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम की तैयारी सिर्फ एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए खिलाड़ियों ने अपनी स्पीड, तकनीक, फिटनेस और प्रतियोगिता की तैयारी को लगातार परखा है। एशियन गेम्स से कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल आयोजित हुई, जिसमें देश के शीर्ष एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को एशियन गेम्स से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच के तौर पर देखा गया। इस प्रतियोगिता में अविनाश सांबले ने लंबे चोटिल ब्रेक के बाद वापसी की। महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिससे एशियन गेम्स से पहले भारतीय खेमे का उत्साह और बढ़ा है। तानिया की कैसी है तैयारियां, इस पर वो कहती हैं,
4: बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एशियन गेम्स जाना है तो उसके उससे पहले अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए। अब अच्छा करेंगे, एशियन गेम्स में कंपटीशन तो बहुत हाई जाएगा क्योंकि चाइनीज अभी टॉप पे चल रही है लड़कियाँ, तो मजा आएगा, मतलब कंपटीशन तगड़ा ही होगा।
1: 2026 में एनसी सोजन ने भी शानदार फॉर्म दिखाते हुए 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

0: 4.8 मीटर की छलांग के साथ 5वां स्थान हासिल किया था। इस बार वो पदक से आगे बढ़कर गोल्ड मेडल के लक्ष्य के साथ जापान पहुंच रही हैं और इस बार उनका मुकाबला अपनी ही साथी एनसी सोजन से देखने को मिलेगा। दिल्ली में हुए इंडियन एथलेटिक सीरीज फाइनल में एनसी ने 6.76 मीटर के साथ गोल्ड जीता था, जबकि शैली ने 6.65 मीटर के साथ 2रा स्थान लिया।
1: उस गेम्स में इससे बहुत अच्छा होने वाला है एंड आज के उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मतलब धीरे धीरे मैं बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ, उससे मैं और मेरी कोच बहुत खुश हूँ।
0: 100 मीटर की रेस में भारत की उम्मीदों को नई रफ्तार देने वाले खिलाड़ी का नाम है गुरिंदर वीर सिंह। पंजाब के इस धावक ने मई 2026 को रांची में 10.09 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। खास बात ये रही कि वो 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बने। उनके लिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हालांकि उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन एशियन गेम्स में उनके पास खुद को साबित करने का एक और बड़ा मंच है। ऐसे में सवाल सिर्फ पदक का नहीं बल्कि ये भी है कि क्या भारत का ये नया स्प्रिंटर स्टार अपनी 10.09 सेकंड की राष्ट्रीय रिकॉर्ड वाली रफ्तार को एशियन गेम्स के मंच पर भी दोहरा पाएंगे या नहीं। सुनते हैं क्या कहना है गुरिंदर वीर सिंह का।
2: कोई प्रेशर नहीं था, हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है, हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। मेरा थोड़ा ब्लॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं थोड़ा ब्लॉक्स पे डिले कर गया, नहीं तो अच्छा टाइमिंग आता। बट हाँ, एशियन गेम्स के लिए और अच्छा प्रिपेयर करेंगे जो लास्ट बचे दिन है, तो होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
0: तो एशियन गेम्स के एथलेटिक्स ट्रैक और फील्ड पर इस बार भारत की उम्मीदें काफी बड़ी हैं। एक तरफ अविनाश सांबले, तजिंदर सिंह तूर और पारुल चौधरी जैसी अनुभवी चैंपियन अपने खिताब बचाने उतरेंगे, तो दूसरी तरफ गुलवीर सिंह, गुरिंदर वीर सिंह, एनसी सोजन, शैली सिंह और निहारिका वशिष्ठ जैसे खिलाड़ी अपनी एथलेटिक्स की नई ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, एशियन गेम्स में कुछ मुकाबले ट्रैक पर होते हैं तो कुछ मैदान पर, लेकिन एक खेल ऐसा भी है जहां मुकाबला होता है हवा की दिशा, समुद्र की लहरों और नाविक के हौसलों के बीच। हम बात कर रहे हैं सेलिंग यानी नौकायन की। ये एक ऐसा खेल है जहां नाव को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हवा को पढ़ने की समझ, संतुलन, तकनीक, रणनीति और सही समय पर सही फैसला लेना पड़ता है। आईची नागोया में सेलिंग प्रतियोगिताएं 26 सितंबर से 3 अक्टूबर को होंगी और इस बार भारतीय दल की नज़र सिर्फ भागीदारी पर नहीं बल्कि पदक पर रहेंगी। एशियन गेम्स में भारत का सफर सेलिंग में धीरे धीरे मजबूत हुआ है। एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर भारतीय नाविकों ने लगातार अपनी पहचान बनाई है। हांगझोऊ 2023 में भारत के लिए सबसे यादगार प्रदर्शन किया विष्णु सरवनन ने। उन्होंने पुरुषों की ILCA 60 डिंगी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को सेलिंग में एक और बड़ी सफलता दिलवाई थी। अब 2026 में विष्णु एक बार फिर भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। विष्णु की उपलब्धियों में एक और बड़ी कामयाबी है 2022 एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। इतना ही नहीं, विष्णु भारत की ओर से टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 दोनों ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, यानी उनके पास एशियन गेम्स के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच का भी अनुभव है। महिलाओं में सेलिंग की बात हो और नेत्रा कुमानन का नाम न आए ऐसा संभव नहीं हो सकता। नेत्रा ने भारतीय सेलिंग में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। वो ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नाविक बनी थी। टोक्यो 2020 के बाद उन्होंने पेरिस 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन एशियन गेम्स की कहानी उनके लिए थोड़ी अधूरी है। 2014 में वो 7वें स्थान पर रही, 2018 में 5वें स्थान पर और हांगझोऊ 2023 में वो पदक से बेहद करीब रहकर 4थे स्थान पर रही। यानी पिछली एशियन गेम्स में पोडियम से सिर्फ एक कदम दूर रही नेत्रा के लिए आईची नागोया एक बड़ा मौका है। इस बार भारतीय टीम सिर्फ विष्णु और नेत्रा तक सीमित नहीं, भारत ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपने मजबूत नाविकों को उतारा है। कात्या इडा कोएल्हो महिलाओं की विंड सर्फिंग स्पर्धा में चुनौती देंगी। भारत के लिए सेलिंग के अलग अलग इवेंट में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की जोड़ी मैदान में होगी। हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं मिक्स 470 डिंगी में रविंद्र कुमार शर्मा और श्रद्धा वर्मा की जोड़ी उतरेगी। युवा वर्ग में माही वर्मा गर्ल्स ILCA 4 में भारत की चुनौती पेश करेंगी। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जिसमें मुकाबला तेज भी है और बेहद शारीरिक भी, रग्बी 7S। रफ्तार, ताकत और टीम वर्क से भरपूर रग्बी 7S भी एशियन गेम्स 2026 में रोमांच बढ़ाने के लिए तैयार है। मुकाबले 1 से 3 अक्टूबर तक पालोमा मिजुहो रग्बी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पुरुष वर्ग में 12 टीमें जबकि महिला वर्ग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुषों में हांगकांग, चीन और महिलाओं में चीन मौजूदा चैंपियन है। भारतीय महिला टीम भी इस चुनौती का

0: चिकित्सा होगी, जहां उसे चीन, जापान, हांगकांग और थाईलैंड जैसी मजबूत टीमों से मुकाबला करना है। 1 अक्टूबर से पूल मुकाबले, 2 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल और 3 अक्टूबर को सेमीफाइनल पदक मुकाबले होंगे। अब देखना होगा कि भारतीय टीम इस बार कितनी बड़ी चुनौती पेश करती है। तो एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसले उससे भी बड़े। चाहे मैदान पर रफ्तार और ताकत का मुकाबला हो, पानी पर संतुलन और रणनीति की परीक्षा, या फिर ट्रैक पर सटीक निशान और मेहनत की कहानी, हर खिलाड़ी देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार है। अब नजरें हैं आगामी एशियन गेम्स पर, जहां हर जीत के साथ तिरंगा और ऊंचा उठेगा। तो तिरंगा ऊंचा उठाने के लिए हर एक खिलाड़ी मेहनत कर रहा है और मेहनत कर रही है यहाँ पर हमारी भारतीय महिला पहलवान। अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए महिला ट्रायल्स दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में आयोजित हुए खास रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन कुमार शर्मा।
1: अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए महिलाओं के 6 ओलंपिक भार वर्ग के ट्रायल्स आज आयोजित किए गए। इन ट्रायल्स में 50 किलो भार वर्ग में यूपी की नीलम ने फाइनल में रेलवे की अंकुश को, 53 भार वर्ग में हरियाणा की निशु ने दिल्ली की तिष्का को, 57 भार वर्ग में हरियाणा की सिमरन ने महाराष्ट्र की स्वाति शिंदे को, 62 भार वर्ग में तपस्या ने अंजलि को, 68 भार वर्ग में दिल्ली की सृष्टि ने हरियाणा की विपाक्षा को पराजित किया। अन्य भार वर्ग 76 किलो में काजल ने हरियाणा की शिक्षा को मात दी। इस विश्व चैंपियनशिप कजाकिस्तान में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दिल्ली में आज हुए ट्रायल्स में कई भार वर्गों में पहलवानों का विश्व चैंपियनशिप के लिए टिकट लगभग तय माना जा रहा है, जबकि कई भार वर्गों में यहां ट्रायल्स जीतने वाली पहलवानों का जापान के आईजी नागोया में होने वाले एशियाई खेलों की महिला कुश्ती टीम में शामिल किए गए इसी भार वर्ग के अन्य पहलवानों से एक बार और भिड़ना पड़ सकता है। 50 किलो भार वर्ग में नीलम को खास चुनौती नहीं मिली, पहले दौर में बाई मिला था, जबकि फाइनल में उन्होंने अंकुश को 10-0 से हराकर तकनीकी दक्षता से बाजी मार ली।
2: अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बाउट बहुत ही अच्छी हुई है और क्या कहते हैं, बाकी अभी हमारी एशियन गेम्स में टीम गई हुई है, उसके बाद वो आएगी लड़की तो उससे एक बार और ट्रायल होगी। बाकी मेरा टारगेट यही है कि मैं देश के लिए वर्ल्ड का मेडल लेके आऊँ।
1: 64 भार वर्ग का फाइनल अंजलि और तपस्या के बीच हुआ, जिसमें तपस्या की मेहनत रंग लाई। 62 भार वर्ग में तपस्या ने फाइनल में 7-3 से बाजी मारी। तपस्या ने पहले दौर की बाई के बाद क्वार्टर फाइनल में काजल को और सेमीफाइनल में रजनीता को 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। अंजलि का सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला हुआ और तपस्या ने इस मुकाबले पे खास नजर रखी और उसके बाद उन्होंने कहा।
3: तपस्या, क्या कहना चाहेंगे फाइनल मुकाबले के लिए? पहले जिस तरह सेमीफाइनल हुआ था अंजलि का और यूपी की पुष्पा यादव का, वो एक अच्छा एक मुकाबला था, उसके बाद आप उसको देख भी रही थी, तो आपने स्ट्रेटजी पहले से तैयार कर ली थी लगता है?
2: हाँ जी, मैंने दोनों की बाउट पहले से ही देखी थी। कैटेगरी में मेरा ये पहला कॉम्पिटिशन है 57 के बाद, तो बाउट्स देखनी जरूरी हो जाती है कि भाई अब हमारा ओपोनेंट क्या कुछ अटैक करता है, तो पहले से माइंड सेट किया जाएगा। फिर
3: इससे पहले जो मुकाबले हुए वहाँ भी ज्यादा आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा? पहले राउंड में बाई मिली थी, दूसरे में काजल और सेमीफाइनल में रजनीता को हराया था।
2: हाँ जी, ज्यादा मुश्किलें तो देखो बराबर के अपोनेंट्स होते हैं हर बाउट में, ऐसा नहीं होता कि हर बाउट हमारे लिए आसान हो, लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं थी, बराबर के थे सारे।
1: 76 भार वर्ग में जीतने वाली काजल ने पहले दौर में बाई के बाद आसानी से अगले दोनों मुकाबले जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
2: मैं बहुत खुश हूँ और मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन था, मैंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों बाउट जीते।
3: तो बिल्कुल आपने शानदार प्रदर्शन किया और जिस तरह आप प्रैक्टिस कर रही थी, आपसे पहले वार्म अप काफी आपने जोर दिया, लगता कड़ी है अपनी आपने मेहनत की है। मैं देख रहा था आप बहुत बाउट से पहले काफी अपना जो है जंपिंग एंड ऑल दिस,
2: मतलब बाउट से पहले वार्म अप होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजरी ना हो, हर एक मसल वार्म अप हो तो अच्छे से वार्म अप होते हैं।
3: तो अभी 78 कैटेगरी में आपका इससे पहले कैसे रिजल्ट रहे हैं?
2: अभी मेरा जूनियर वर्ल्ड में भी गोल्ड आया था और 2 सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग में भी मेरा गोल्ड आया था।
1: ट्रायल्स के बाद महिला टीम के कोच वीरेंद्र ने कहा,
4: बढ़िया ट्रायल रही है हमारी और नई लड़कियां भी, कई लड़कियां हमारी आई हैं और जैसे 53 किलो में निशु है, 57 किलो में नई लड़की आई है, 62 में तपस्या है और 68 में भी नई लड़की है सृष्टि।

0: 76 में तो काजल है, लेकिन दो तीन वजनों में हमारी दोबारा ट्रायल होगी। जो एशियन गेम में लड़कियां जा रही हैं तो दोबारा ट्रायल होने की होगी संभावना है।
1: कई जगह बड़े कठिन मुकाबले हुए और भाई फाल भी चैलेंज भी हुए, एक अच्छा कंपटीशन रहा।
0: ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर हमारी बेंच स्ट्रेंथ दूसरी पंक्ति बढ़िया है, बराबर की नई और पुरानी लड़कियों में बढ़िया फाइट हो रही है, तो फ्यूचर के लिए अच्छी बात है।
2: ट्रायल से यह भी स्पष्ट हो गया कि महिला भार वर्ग में कंपटीशन पहले से बड़ा है और कई युवा पहलवान सीनियर टीम के लिए अपनी मजबूत दावेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
3: और अब श्रोताओं बात कर लेते हैं AHF पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की। AHF पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 इस बार भारत में आयोजित होने जा रही है और एशिया की शीर्ष हॉकी टीमों के बीच होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पर सभी की नजरें रहेंगी। टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान की टीम के भारत आने की पुष्टि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। प्रतियोगिता के मुकाबले पंजाब के जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होना है। इसी के साथ आपको जाते जाते बता देते हैं सुब्रतो कप के बारे में, जहां 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में अब युवा फुटबॉलरों की सबसे बहुप्रतीक्षित जूनियर बॉयज अंडर 17 श्रेणी की शुरुआत होने जा रही है। इस वर्ग के मुकाबले 15 से 24 सितंबर तक नई दिल्ली NCR में खेले जाएंगे। देश भर से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न स्कूलों की टीमें राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं।
4: तो इसी के साथ घड़ी की सुइयां हमें आगे इस कार्यक्रम को ले जाने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। मैं अपने सहयोगी अभिनव के साथ, अपने प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अपने सहयोगी नवीन कुमार शर्मा के साथ लेती हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
7: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
6: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
6: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य

0: देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security and the welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology and critical minerals could become a hurdle to progress. India hosted the summit under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, placing people-centered development and the interests of the Global South at the heart of its presidency. The most significant outcome of the BRICS summit was the adoption of the New Delhi Declaration, which outlined the shared position on major geopolitical and economic issues. On the situation in West Asia, BRICS leaders called for maximum restraint, dialogue and diplomacy, and stressed the need to protect civilians and civilian infrastructure. The leaders strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and reiterated the commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism. The government said that the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control due to the relentless efforts of the army. In its latest annual report 2025-26, the Defence Ministry said that these efforts have led to a significant decline in violence, a reduction in protests and zero incidents of stone pelting. The Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has expressed concern over prolonged protests and unrest in the region, particularly in Rawalakot and the districts of Poonch and Sudhnoti. The rights body said the demonstrations have now completed 100 days, creating uncertainty and affecting the wider region. It warned that any further delay in meaningful dialogue could deepen public frustration, mistrust and instability. Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said if even one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the two-day Hindi Divas 2026 and the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai. He said, though India has many languages and dialects, the Indian

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: देखिए मंजीत बहन, कहते हैं ना कि भाई आज बहुत ही पुण्य का दिन है, गणेश चतुर्थी है, ऊपर से आज हिंदी दिवस भी है और चारों तरफ त्योहारों की, जैसे त्योहार शुरू हो जाते हैं ना कितनी बार, ऐसे आप तीजो शुरू होती है ना मंजीत बहन, उसके बाद त्योहार आने शुरू हो जाते हैं, तीजों
1: बिल्कुल
0: के बाद
1: वंदना।
0: एक के बाद एक आता है, और सभी त्योहार हम चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है मिलजुल कर ही मनाते हैं।
1: जी
0: और ये जो हमारा गणेश उत्सव है, गणेश जी की हम आज प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। और कहते हैं पहले तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे देश में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
1: बिल्कुल, ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपने बताया वंदना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, जिसे हम
0: बिल्कुल
1: गणेश चतुर्थी कहते हैं।
0: जी हाँ। और कहते हैं ना गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता तो हैं ही, कहते हैं कि ये सब बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। और किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए हम
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना चाहे कोई भी कार्य है उसको अर्पण करते हैं कि हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं, इसकी इसमें कोई विघ्न ना आए,
1: बिल्कुल
0: आप ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल, विघ्नहर्ता तभी कहा जाता है।
0: जी
1: और कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है, और इस प्रतिमा को 9 दिन तक पूजा

0: जाता है और बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो दर्शन के लिए भी आते हैं। और 9 दिन बाद भजन कीर्तन किया जाता है और उसके बाद इस प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर या फिर जल के अंदर विसर्जित किया जाता है।
1: उसके पीछे भी एक कथा है मंजीत बहन की। कहते हैं कि जो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने महाभारत ग्रंथ में लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की थी कि गणेश जी से उन्होंने कहा था कि बिना रुके आप 10 दिन तक लगातार आपको ये लिखना है। तो जब गणेश जी एक जगह बैठ के और 10 दिन तक लिखते रहे बिना रुके, तो उनके शरीर का तापक्रम बढ़ने लगा। और तो वेद व्यास ने जब उनके ऊपर ठंडा गंगा का जल डाला तो तब उनका ताप थोड़ा कम हुआ। इसीलिए हम इनका विसर्जन करते हैं 10वें दिन।
0: बिल्कुल, बहुत सारी कथाएं हैं और गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं ना, गणपति गण जमापति यानी अर्थात है गण अर्थात पवित्रक और पति अर्थात स्वामी। गणपति का पूरा अगर हम विश्लेषण कर लें तो पवित्रों के स्वामी कहा जाता है।
1: बिल्कुल, और गणेश जी के बारे में बताया जाता है, उनका मिष्ठान में उनको मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद थे, तो सब उसी का भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो एक ऐसा ही हम भी अपने भाइयों को भजन सुनवाते हैं। तो आइए सुनते हैं चंद्रपाल और साथी की आवाज में ये भजन।
2: ईश्वर को कर ले याद।

0: देखिए, मंजीत बयान ये तो था भजन चंद्रपाल और साथियों की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा भजन था। हमने भी गणेश जी की स्तुति कर ली है। और कहते हैं ना कि भाई, भाषा का अगर प्रयोग करना होता है तो उसमें अपने कुछ भाव व्यक्त करने पड़ते हैं। कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियाँ किसी भी देश और संस्कृति के लिए भाषा का महत्व को दर्शाती हैं। कहती हैं, भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की पहचान, उनकी संस्कृति और संस्कारों का संवाहक होती है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली कड़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा वंदना बहन। और भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
0: जो कि आज है
1: बिल्कुल।
0: जी।
1: और 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
0: जी
1: और स्वीकार ही नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और इसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना।
0: बिल्कुल
1: और साथ ही साथ राष्ट्रीय पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं है बल्कि हमारे संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी है।
0: बिल्कुल, कहते हैं इसकी जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं, जिसे देववाणी कहा जाता है। और भारत में सभ्यता, अध्यात्म और ज्ञान की दुनिया तक पहुंचाने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। और कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी की रचनाएं करके भारत को सही दिशाएं दी हैं।
1: बिल्कुल। और हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं और इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध, लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि किया जाता है। और हिंदी दिवस में हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करके उन्हें भाषा पर जो सम्मान की पहल की गई है।
0: बिल्कुल, प्रेरित से मुझे एक बात याद आई कि स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी भाषा से जोड़ने से जो हमारे मतलब सब लोग जुड़े थे, वो हिंदी ही भाषा ही थी।
1: बिल्कुल। आम जन लोग की जो भाषा है, तभी तो कहते हैं ना, जो आम जन घर घर तक जो पहुंची है
0: जी
1: भाषा,
0: बिल्कुल, कोने कोने में लोगों को एकजुट करने के लिए जो भाषा पहुंची थी वो हिंदी
1: हिंदी
0: ही
1: ही थी।
0: थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखा जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय भाषा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है और कम से कम हर वर्ष एक सप्ताह तक इस राष्ट्रभाषा सप्ताह को मनाया जाता है, जिसके अंदर हिंदी निबंध लेखन, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, वाद विवाद, श्रुतलेख प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी इत्यादि की जो प्रतियोगिताएं कराई जाती है और पुरस्कार राशि भी दी जाती है।
0: बिल्कुल, कहते हैं भारत एक बहुभाषी देश है और जहाँ सैकड़ों भाषाएं तो बोली जाती हैं, लेकिन ऐसे में हिंदू एक सेतु का काम करती है और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम
1: बिल्कुल।
0: सबको एक जगह जोड़ती है। और क्या नाम, ये वर्तमान में हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है।
1: बिल्कुल। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। और इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है।
0: बिल्कुल, लेकिन आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश बोल

0: पढ़ने में, कहते हैं इंग्लिश बोलने में ज्यादा महत्व रखती है, बाकी हिंदी बोलने में थोड़ा कतराती है, उसे लिखने में भी कतराती है। तो हमारे जो युवा साथी हैं उनसे ये हमारी अपील कह लो या रिक्वेस्ट कह लो कि भाई आपको हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए।
1: बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलचाल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए हिंदी को, क्योंकि जनमानस की भाषा है और जब तक हम इसे पे अपने मान और सम्मान से हमें हिंदी बोलनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं ऋषिपाल नागर की आवाज़ में ये रागनी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ऋषिपाल नागर की आवाज़ में प्यारा सा भजन। और देखिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक और टॉपिक है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना।
1: बिल्कुल सही।
0: और इस योजना के माध्यम से जो हमारे भाई हैं वो अपनी, कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना, देश के 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों, कृषि जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को सुधारने के लिए शुरू की गई योजना है। और इस योजना का आरंभ 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई थी और 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसका उद्देश्य है देश के 100 कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र, यानी कि कृषि पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे लेकर आना, जिलों
0: जी
1: में किसानों की उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधा में सुधार करना है। और इसकी अवधि की बात करें तो ये योजना 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, यानी कि 6 वर्षों के लिए लागू की गई है। और
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम बजट की बात करें तो इस पर प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। और समन्वय की बात करें तो इसमें 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। और सब्सिडी की अगर बात करें तो सस्ते बीज और उर्वरक पर भी 50% से लेकर 80% तक की भारी छूट दी जाती है। और सिंचन उपकरण जैसे ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को खरीदी पर बड़ी सब्सिडी मिलती है, जिसमें 30% से लेकर 50% तक पानी की बचत होती है।
1: बिल्कुल। और भी अगर बिंदुओं पे बात करें, जैसे कि जिला अधिकारियों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार की जाएंगी, और साथ ही साथ किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली, पारदर्शिता और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा पहुंच तथा जो जवाबदेही है जो सुनिश्चित कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखिए ऋण की अगर बात करें तो ऋण भी बहुत ही आसानी से मुहैया हो जाता है किसानों को, साहूकारों के चंगुल से बचने के लिए। जो हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छी इस योजना का को किसानों तक पहुंचाया है कि वो आसान तरीके से ऋण प्राप्त कर सकें, और बीज, कीटनाशक दवाएं और खाद जैसी दैनिक ज़रूरतों के लिए क्रेडिट का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है एक, उसके माध्यम से 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का ऋण 4% से 7% तक की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ जो योजना है, 100 जिलों की पहचान के आधार पर इसको निर्धारित किया गया, जैसे कि निम्न उत्पादकता होगी और कम फसल जिसका संघनन होगा, और यहाँ पर कम ऋण भुगतान भी होगा।
0: बिल्कुल। और जैसे लंबी लॉन्ग टर्म्स वाला ब्याज भी उपलब्ध है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना, नलकूपों या आपको समरसीबल लगवाना है, निजी स्तर पर छोटे कोल्ड स्टोरेज या गोदाम बनवाने हैं, जैसे पूंजीपति संपत्तियों के निर्माण के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आसान किस्तों पर मिलता है।
1: बिल्कुल। और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना भी रहेगा इसके अंतर्गत, और बेहतर सिंचाई और दीर्घकालीन ऋण उपलब्धता और फसल विविधीकरण और सतत कृषि को बढ़ावा देना रहेगा।
0: बिल्कुल। अब आप इतनी सारी बातें अगर इस योजना से मिलती है तो हमारा तो यही सुझाव है कि हमारे भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना, किसान धन धान्य योजना, और ये क्या नाम, आप हमारे जो किसान भाइयों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं वो भी एक
1: बिल्कुल। और इस तरीके से जो हमारे किसान हैं उसकी
0: जी
1: उन्नति के लिए काफी सारी जो सुविधाएं हैं हमारी सरकार देती है, और काफी सारी योजनाएं लगातार भारत
0: बिल्कुल।
1: सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
0: हाँ, इनका फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी खेती को अच्छी तरह से करना चाहिए और अपनी आय को दुगना करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अब आगे हम भी बढ़ते हैं।

0: principal Nagarka. Y a Glagit.
1: सुनाते हैं हम यशवीर नागर और यशवीर नागर रचौदी की आवाज में।

0: एक किस्सा था मेनका और विश्वामित्र का, और इसी
1: और इसी के साथ ग्राम संसार जो कार्यक्रम है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रस्तुत
0: जी
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल, मुझे मंजीत कौर और मेरी सहयोगी वंदना को दीजिए अनुमति। राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। मंजीत बहन, हम फिर से उपस्थित हैं अपना कार्यक्रम लेके, और हम अपने भाइयों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी दिलवाएंगे और साथ साथ ही कुछ उनको मनोरंजन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आज जानकारी दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपने भाइयों से बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में।
1: बिल्कुल
0: कहते हैं ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारी सरकार तय करती है हमारी फसलों का, सरकार ने 2026-27 में जो हमारा खरीफ की फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज और लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी के बीज यानी कि 622 रुपये प्रति कुंटल, उसके बाद कपास पर 557 रुपये प्रति कुंटल, और उसके बाद तिल पर 500 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाई गई है।
1: बिल्कुल
0: और इसमें सभी भुगतानों की कहीं की गई लागतें शामिल हैं, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, और पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद और कच्चे तेल के उपयोग में होने वाले खर्च, सिंचाई शुल्क, औजारों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट का संचालन के लिए डीजल, बिजली आदि विविध खर्चों पर पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, ये सब जुड़ता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और क्योंकि ये किसान के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है और या फिर खरीद मूल्य है, जो हमारी भारत सरकार है वो बहुत सारे कड़े कदम और नियम बनाती है ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और
0: बिल्कुल
1: फ़ायदा पहुंच सके।
0: बिल्कुल, क्योंकि बाजार में कीमतें गिरने पर किसानों का तय मूल्य गिर जाता है, उनकी कीमतों का, उनकी फसलों का। तो हमारी जो सरकार है एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती कि इस मूल्य में तो आपको आपकी फसल बिकेगी ही बिकेगी। वो एक अलग चीज है कि हमारे किसान भाई उससे अधिक की मूल्य में बेच दें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जगह जगह मंडी है, ऑनलाइन है, ई मंडी से जुड़े हुए हमारे किसान भाई बहन, तो जहाँ उनको ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं अपने

0: फसल बेचेंगे।
1: बिल्कुल। और MSP का जो निर्धारण है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर और अन्य गैर मूल्य उपायों के संबंध में किया जाता है, तैयार किया जाता है। आयोग किसी भी वस्तु या वस्तुओं के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना के व्यापक अवलोकन के अलावा निम्नलिखित कारणों पर भी ध्यान देती है, यानी कि उत्पादन लागत होगी, इनपुट कीमतों में परिवर्तन हो गया, इनपुट आउटपुट मूल्य जो समता है उस पर देखा जाता है, बाजार कीमतों के रुझान और मांग आपूर्ति अंतर फसल जो मूल्य है समता उसको देखा जाता है, औद्योगिक लागत जो संरचना है उस पर भी प्रभाव डालता है, और जीवन यापन की जो लागत है उस पर भी प्रभाव डालता है, सामान्य मूल्य स्तर को देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की जो स्थिति है उसको आंका जाता है, किसानों को भुगतान की गई कीमत और किसानों द्वारा प्राप्त कीमत में भी समानता देखी जाती है।
0: बिल्कुल। और कुल इसका निचोड़ के जो भाव आता है वो है किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना।
1: बिल्कुल
0: और इसने सरकार जो वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों को MSP तय कर चुकी है, जो कि हमारे किसान भाई यूट्यूब पे या आप किस कृषि मंत्रालय में, कृषि विभाग में, किसी में भी आप कहते हैं ना, उस पे
1: जानकारी
0: जाकर
1: प्राप्त कर।
0: जानकार प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक पे जाके भी आप इस चीजों का वो कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये तो थी जानकारी। और अब एक और जानकारी दिलवाते हैं, तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बुआई। डॉक्टर YS सिवे और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। और डॉक्टर YS सिवे जो सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से हैं, तो आइए सुनते हैं इनसे ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती में अगर हम बदलाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और आज हम बात करेंगे कि तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बिजाई कैसे की जाए, कब की जाए और इससे अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर YS सिवे जी, जो कि सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि तोरिया और तिलहनी जो फसलें, जैसे तोरिया और सरसों की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है?
3: हाँ, देखिए दोनों में अंतर ये है कि तोरिया जो है कम अवधि की फसल होती है और सरसों जो है समय ज्यादा लेती है।
2: जी
3: और ये एक विंडो पीरियड होता है उसमें हम तोरिया को उगा सकते हैं। खरीफ की बहुत सी फसलें कट गई हैं,
2: जी
3: कटने के बाद में खेत खाली हो जाएंगे, जैसे ज्वार है या बाजरा है या मूंग है, उड़द है, ये जल्दी पक जाती हैं। और जो हम रबी की फसल की बुआई करते हैं, जैसे गेहूं वगैरह है, जौ है, जई है, तो उससे पहले इसको लिया जा सकता है तोरिया को। तोरिया जो है कम अवधि की एक हमारी तेल वाली फसल है। सरसों जो है थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक पकती है, तो इस वजह से जो है इस समय प्रीफर करते हैं तोरिया लगाने को। बहुत से किसान जो है जई लगाते हैं, जौ लगाते हैं, इवन गेहूं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम समय में कम अवधि में अच्छी पैदावार देती है। तो इस वजह से जो है तोरिया को लगाने का प्रिफरेंस इस महीने में बहनों और भाइयों को करनी चाहिए।
2: तो डॉक्टर साहब, जो तोरिया है और सरसों है, दोनों के क्या तेल में भी कुछ फर्क होता है?
3: हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तेल दोनों की तेल लगभग उतनी मात्रा होती है, लेकिन थोड़ा तेल में अंतर है, क्वालिटी थोड़ी डिफर हो सकती है। और विशेषकर क्योंकि आजकल क्वालिटी के लिए सरसों की किस्में अलग आ गई हैं,
2: जी
3: जिसमें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निकाली है, क्योंकि जिसमें थोड़ी झल ज्यादा मारती है
2: जी
3: और जिसमें कुछ कम झल मारती है, दोनों में थोड़ा क्वालिटी का अंतर होता है। लेकिन फिर भी तेल इनका दोनों का खाने के लिए अच्छा होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, ऐसा अनुसंधानों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि सरसों का तेल हो या तोरिया का तेल हो, दोनों खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अगर हम तोरिया की बात करें, इसकी बिजाई का सही समय?
3: जैसे खेत खाली होते चले जाते हैं, वैसे इसकी जो है 15 सितंबर के बाद में हम इसको बोना शुरू कर देते हैं तोरिया को, और 15 अक्टूबर तक हम इसको लगा सकते हैं। ये बढ़िया समय है।
2: तोरिया की उन्नत किस्में कौन
3: हाँ,
2: कौन सी?
3: तोरिया की उन्नत किस्में वैसे तो क्षेत्र अनुसार अलग अलग है, लेकिन अभी जो एक सबसे प्रमुख किस्म है वो TS 38 करके है, जो आसाम से निकाली गई है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी मानी गई है। 22-23 में किस्म आई है, और इससे पहले भी बहुत किस्में निकाली गई हैं। उनमें विशेष कर है पीताम्बरी 13 है, सुश्री है, TL 17 है, पंथ हिल तोरिया 1 है, पंथ पंत तो

0: तोरिया 508 है, राज विजय तोरिया 1 है, तपस्वरी है, त्रिपुरा तोरिया 1 है, और RSPT 6 है, आजाद चेतना जिसको TKM 14-2 के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारी किस्में हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार जो है अनुमोदित की गई हैं। विशेषकर जैसे मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के लिए जो है तापेश्वरी बहुत अच्छी है।
1: जी,
0: 2018 में
1: क्या
0: लेकर
1: खूबी है इसकी।
0: इसकी खूबी ये है कि इसकी जो है अच्छी आती है और एक साथ जो है सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी होती है, ये इसकी खूबी है। ज़्यादातर जो है हमारी तोरिया है इसमें सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी होती है, इसमें जो है एक साथ पक जाती है और उसको काट के और फिर जो है हम आगे दूसरी फसल लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम उत्तर प्रदेश के लिए आज़ाद चेतना करके जिसे ये बताई है 2020 में निकाली गई है लेटेस्ट किस्में, और ये जो है ये भी कानपुर की वैरायटी है और बहुत अच्छी मानी गई है तोरिया के लिए। और ऐसी उत्तराखंड के लिए जो है उतेरा बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन ये पनतिल तोरिया वन करके पन तोरिया 508 ये दोनों उत्तराखंड के लिए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में हैं, उन्हीं को चुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी किस्म जो निकाली जाती है वो जलवायु मिट्टी को देख कर निकाली जाती है। तो
1: तो
0: अपने क्षेत्र
1: ये सारी किस्में डॉक्टर साहब इस समय लगाने का सही समय
0: सही
1: इनका।
0: सही समय चल रहा है बिल्कुल इनका, जैसे बताया 15 सितंबर से लगाने का सही समय होता है, तो इनको लगा सकते हैं तोरिया को।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात अगर अगेती सरसों की करें
0: जी,
1: तो उसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी।
0: ये आगेती सरसों में विशेषकर जो है पूसा मस्टर्ड जो हमारी 25 है ये बहुत अच्छी मानी गई है, लगभग 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है 120 से, ये बहुत अच्छी किस्म है और पैदावार भी अच्छी देती है। यदि किसानों को दो चुननी हो,
1: जी
0: आगेती सरसों लगानी है और तोरिया लगानी है और उनके पास में थोड़ा ड्यूरेशन है, तो वो जो है पूसा मस्टर्ड 25 को लगाएं। इसका बीज भी उपलब्ध है हमारे यहाँ सील प्रोडक्शन यूनिट में, NSC में भी है, पूसा संस्थान में भी है, तो इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, इसकी पैदावार थोड़ी ज़्यादा मिलेगी इससे।
1: लगभग कितने में हो जाते हैं इसके।
0: इसकी जो है जैसे हमारी तोरिया की जो है लगभग 1 टन के आसपास आती है, इसकी जो 1.2 टन 1.3 टन आ जाती है।
1: दाना भी इसका शायद
0: दाना
1: बड़ा
0: भी थोड़ा
1: होता है।
0: मोटा होता है, तो इसका मतलब जो है 1.5 गुना तक यील्ड मिलती है इसके अपेक्षा। दूसरा जो है इसका जो हमारी अवशेष बचता है उसकी भी आजकल इकोनॉमिक वैल्यू है,
1: जी,
0: क्योंकि वो भट्टे वगैरह में वैसे यूज कर लेते हैं या किसी, दाना तो मिलेगा ही लेकिन इसका अवशेष जो भी यूज हो जाता है।
1: तो जो अगेती सरसों की बिजाई का समय कब शुरू हो
0: हाँ,
1: जाएगा।
0: अगेती सरसों का बिजाई का समय जो है वो लगभग 20 सितंबर से शुरू हो जाता है, 20 सितंबर के बाद जो है अगेती सरसों लगा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लगाते समय जो है ये सुनिश्चित कर लें कि खेत में नमी होनी चाहिए, तभी जो है इसकी बिजाई करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब बारानी क्षेत्रों में क्या इसकी खेती की जा
0: हाँ,
1: सकती है।
0: बरानी क्षेत्रों में तोरिया की जो है अगेती सरसों की खेती की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि अभी बारिश हुई है, जुताई पहले कर लेते हैं तो
1: जी
0: खाली खेत रहता है, तो जो रेनफॉल की मॉइस्चर है उसी पर इसका जर्मिनेशन हो जाता है और अच्छी पैदावार होती है।
1: कहने का मतलब जो गेहूं वगैरह की बिजाई करते हैं जब किसान भाई उसके खेत की ज्यादा तैयारी करते हैं तो या
0: ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मतलब खेत पट है बिल्कुल एकदम बारिश हो गई है, तो एक जुताई करके फिर सीधी बिजाई कर सकते हैं, इवन मतलब सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, लाइनों में लगाएं इसको
1: जी। तो
0: खेत के
1: बीज
0: नाले।
1: की मात्रा
0: बीज की
1: कितनी।
0: मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारा तोरिया चाहे अगेती सरसों दोनों के लिए।
1: तोरिया तो हमारे किसान भाई खाली तोरिया लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई जो सरसों लगाते हैं उसके साथ कुछ मिक्स खेती भी करते
0: हाँ,
1: हैं।
0: देखिए आपने सही सवाल पूछा है, जब हम मेन सरसों लगाएंगे
1: जी
0: तो उस समय अक्टूबर के महीने में लगाते हैं।
1: जी
0: सरसों का सही समय लगाने का जो होता है, जो हम सही समय वाली बता रहे हैं,
1: जी
0: तो उसमें जो है सरसों के साथ में सरसों प्लस चना, सरसों प्लस मटर, सरसों प्लस जो है हम आलू, ये सारी सरसों प्लस गन्ने जो अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं गन्ने की, तो उसमें जो है हम सरसों लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम खेती कर सकते हैं और इसके दो फायदे होते हैं।
1: जी
0: एक तो हमारी जो है मेन फसल जो भी हम लगा रहे हैं, चाहे हम मस्टर्ड बेस लगाएंगे तो आलू की दो लाइन हम बीच में लगा देंगे, हमारी उतनी आलू की पैदावार भी मिलेगी, और हमारी जो है फिर चना है, मटर है, मसूर है, इनको लगाएंगे इनकी पैदावार भी मिलेगी। और विशेषकर बरानी क्षेत्रों में तो हमको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, हमको जो है मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, लाइनों में लगाना चाहिए,
1: जी
0: ताकि जो है हमारा पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे, और क्योंकि ये फैलने वाली है और कुछ

0: सेड लविंग क्रॉप है हमारी, जो सेड में भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जैसे विशेषकर चना है, मटर है, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेड का इफेक्ट, ये बल्कि अच्छा माना जाता है संयोग कि हमारा जो है दो दाल वाली या तेल वाली फसल का यदि हम सहफसली खेती करते हैं तो हमारा एश्योर्ड हो जाता है कि हमारा पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ जाता
1: और मृदा स्वास्थ्य
0: है, मृदा
1: भी अच्छा
0: स्वास्थ्य
1: है।
0: भी बना रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हमारी दो दाल वाली फसलों में, तो इस चीज़
1: तो
0: में।
1: डॉक्टर साहब, इनका अनुपात क्या रखना
0: हाँ,
1: चाहिए?
0: अनुपात देखिए, सरसों की एक लाइन लगाई, फिर जो है हम तीन लाइन जो है चने की लगा सकते हैं, मटर की लगा सकते हैं, मसूर की लगा सकते हैं और गेहूं की लगा सकते हैं, फिर एक लाइन जो है हम, अर्थात जो है 1:3 रेशियो के हिसाब से हमको लगाना चाहिए। ऐसी जो आलू की हम दो लाइन लगानी चाहिए, एक सरसों लगा दी, फिर दो लाइन आलू की, उसके बाद जो फिर एक सरसों की। तो क्रॉप के अनुसार जो गन्ने के अंदर जो है हमको जो है एक ही लाइन काफी होती है, जैसे
1: जी
0: गन्ना हमने प्लांट किया तो
1: जी
0: एक ही लाइन बहुत होती है।
1: क्योंकि गन्ने की तो बिजाई थोड़े
0: हाँ
1: जब करते हैं,
0: हाँ
1: जैसे
0: तो
1: शरदकालीन बिजाई का समय चल रहा है
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उसमें बिजाई करेंगे, और जब तक गन्ना उगेगा तब तो सरसों
0: हाँ,
1: तो
0: सरसों अच्छी हो जाएगी, शरदकालीन गन्ने में जो है मस्टर्ड बहुत अच्छी होती है
1: डॉक्टर
0: सरसों में।
1: साहब, गन्ना और सरसों का तब भी महत्व था और आज भी
0: आज भी
1: महत्व।
0: आदमी आज और बढ़ गया है,
1: जी
0: आज यूं बढ़ गया क्योंकि हमारी तेल वाली जो तेल का उत्पादन हमको बढ़ाना है
1: जी
0: और तेल हम आयात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमको ये सबसे अच्छी चीज है कि हम क्यों ना जो अपने जो क्षेत्र में जो गन्ना लगाते हैं वहां पे जो है सरसों की खेती करें ताकि हमारी आमदनी बढ़ जाए और हमारे साथ साथ जो है आयात का जो निर्भरता है उस पर कम हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आता है, तो इस हिसाब से जो है शुगर केन प्लस मस्टर्ड की बहुत बढ़िया इंटरक्रॉपिंग है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें आपने के सरसों के उत्पादन को बढ़ाना है,
0: हाँ
1: तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास कर
0: हाँ
1: रही है।
0: सरकार भी प्रयास कर रही है, सरकार जो है मतलब ऑल सीड मिशन चला रखा है, उस गवर्नमेंट जो है जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से जो है सीड किट प्रोवाइड कर रही है सरसों के और जो भी हमारे ऑल सीड वाली फसलें उनके, और उसके साथ साथ जो है कुछ अनुदान भी दे रही है, अनुदान दूसरे रूप में दे रही है, मतलब जैसे हम सरसों की खेती कर रहे हैं, किसी ऑयल सीड की खेती कर रहे हैं तो हम जो है अपने फार्म पे हम फ्लड इरिगेशन ना करके इरिगेशन का इस्तेमाल कर
1: जी
0: सकते हैं, तो डिफरेंट माध्यम से जो है गवर्नमेंट जो है इसको सब्सिडी देके और प्रमोट कर रही है कि हम किसी तरीके से जो है हमारा जो तेल का जो है उत्पादन बढ़े हमारे देश के अंदर और निर्भरता हमारे दूसरे देशों पर कम हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, उत्पादन तो जब भी बढ़ेगा जब अच्छी किस्में आएंगी,
0: अच्छी
1: इसमें जो
0: किस्में
1: कृषि
0: अच्छी,
1: वैज्ञानिकों का
0: हाँ
1: क्या योगदान है?
0: हाँ किसी देखिए जैसे मैंने बताया कि नई नई किस्में निकल रही हैं, जैसे अभी इस साल जो मस्टर्ड की पिछले साल दो वैरायटी हमारी निकली है, पूसा की,
1: जी
0: पूसा मस्टर्ड 37 और पूसा मस्टर्ड 38, दोनों बहुत बढ़िया किस्म है, इनकी पैदावार जो है 3 टन से भी ज्यादा आ रही है, तो यदि आप 3 टन जो है मस्टर्ड की पैदावार ले रहे हैं तो इतनी अच्छा नई नई किस्में आ रही हैं और नई नई किस्मों को हम पहुंचा भी रहे हैं किसानों के माध्यम, मतलब चाहे हमारा MGMG प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी सीड किट दे रहे हैं और चाहे जो है हम अपने अडोप्टेड विलेज हैं उनकी उनमें भी हम जाकर दे रहे हैं, चाहे अपने KVK के माध्यम से, तो सीड भी पहुंचाया जा रहा है, सीड भी दिया जा रहा है, सींग इज बिलीविंग, किसानों को लाकर मेले
1: बिल्कुल
0: में भी
1: बिल्कुल,
0: दिखाया
1: हाँ,
0: जाता
1: देख
0: है,
1: के विश्वास करना।
0: विश्वास करना, तो ये सारी चीजें। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जो जितनी जरूरत पोषक तत्वों की है मृदा परीक्षण के आधार पर वो भी डालने की जरूरत है, विशेषकर जो है तेल वाली फसलों में सल्फर की जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर भी देने की जरूरत है, क्योंकि सल्फर का रोल जो है वो ऑयल सिंथेसिस में होता है,
1: जी
0: तो जहाँ कमी है वहाँ सल्फर को, चाहे बेंटोनाइट सल्फर है चाहे एलिमेंटल सल्फर है, उसके रूप में देना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमारे तिलहनी फसलें हैं इनसे अधिक उत्पादन लें, आप कुछ खास बातें बताना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, एक तो जो अनुमोदित किस्में अपने क्षेत्र के लिए उनको ही चुने और दूसरी बात यह है कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, जितनी नाइट्रोजन की जरूरत है उतनी नाइट्रोजन दें, इसमें विशेषकर जो है तोरिया में और अर्ली जो हम सरसों लगाते हैं उसमें लगभग 80 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की और लगभग जो है 30 किलोग्राम हमको सल्फर की जरूरत पड़ती है, तो इन इनको जो है आप बुआई के समय डालें, नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा जो है बुआई के समय डालें और आधी मात्रा जो है पहला पानी देने के बाद डालें, तो इस तरीके से जो पोषक तत्वों का प्रबंधन करना भी, अच्छी पैदावार के लिए किस्मों का चुनना,

0: और बीज सही मात्रा में डालना और बीज को लाइनों में डालना, इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई तोरिया और सरसों की बिजाई करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर YS सिवे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे बहुत ही अच्छी जानकारी तोरिया और अगेती तिलहनी फसलों की बुआई। डॉक्टर YS सिवे, सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और अब आगे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को बताते हैं, कुछ चुनिंदा चीज़ों के भाव बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं श्रीपाल फौजी को।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे शिवपाल फौजी की आवाज में ये उपदेश।
1: बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं आजादपुर मंडी के भाव आज के। और सबसे पहले हम सब्जियों के ऊपर बात करेंगे। आज टमाटर अगर प्रति किलो की बात करें तो 18 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो रहा। वहीं प्याज की बात करें तो 24 से 26, आलू की बात करें तो 11 रुपए से 12 रुपए के बीच, फूलगोभी 15 से 45, वहीं हरी मिर्च 12 से 16 रुपए प्रति किलो का रहा।
0: और हरियाणा की कुछ मंडियों के भाव मेरे पास भी हैं मंजीत बहन। धान की जो भाव है इस वक्त हरियाणा की मंडियों में 3600 रुपये से 3950 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहा, और गेहूं 2585 से 2600 रुपये के बीच में रहा। ग्वार का भाव 5000 प्रति कुंटल के भाव से रहा। मक्का 2100 रुपये प्रति कुंटल, और सेब का जो भाव है वो 7000 से 12000 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहा। और भिंडी और करेला जो सब्जियां हैं वो 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रही।
1: बिल्कुल, ये तो थे मंडी के भाव। और इसी के साथ अब मौसम का हालचाल जान लेते हैं कि जो आज का जो तापमान रहा वो 33 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम, और हल्की हल्की बारिश रही। और आर्द्रता की बात करें तो 62% रहा। और वहीं कल की बात कर ले तो कल का जो तापमान यानी कि 15 सितंबर का जो तापमान रहने वाला है अधिकतम 33 रहने वाला है, उसके साथ साथ न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें तो 68 रहने वाला है और बारिश की संभावना भी दर्शाती है।
0: बिल्कुल, हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं, अगर तेज बरसात हो जाती है किसी वजह से, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी तेज बरसात हो जाती है, कभी आंधी चलने लगती है, कभी कुछ, तो अगर पानी किसी वजह से भर जाता है आपकी खेती में तो उस

0: की निकासी बराबर बनाते रहें, क्योंकि अगर फसलों में पानी भरा रहेगा तो बेल वाली सब्जियां गल सकती हैं और आपका नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम का पता भी बता देते हैं। तो जो हमारा पता है वो है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली, 110001। आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर भेज सकते हैं, आप लेटर के माध्यम से या SMS के माध्यम से या फ़ोन करके WhatsApp पर। तो हम आपके फ़ोन का या SMS का इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का कृषि कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मुझे मनजीत कौर और वंदना को दीजिए अनुमति।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया। लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित। गणेश चतुर्थी पर राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दशम गणपति महामहोत्सव का भव्य उद्घाटन। 2100 शंखों की गूंज से बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग सेवा से जुड़े हुए अलग अलग कार्यों पर काम करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 25,000 वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं राजधानी में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
9: ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के अपने मिशन के तहत पूरी दिल्ली में हमारे एनवायरनमेंट विभाग द्वारा जो 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का टारगेट था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वार्ड में अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ करके प्लांटेशन करने का भी हमारा इस पखवाड़े में पूरा प्लान बन चुका है।
8: इसके साथ ही मेरे सपनों का भारत विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चित्रकला, भाषण और रील बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। दिल्ली के लगभग 5,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान यमुना सफाई से जुड़े हुए

0: को देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, रक्त संग्रह, मेडिकल सहायता, सुरक्षा, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी सुविधाओं के संबंध में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और दिल्ली वासियों से अपील की कि वे आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करें और सेवा पखवाड़ा का सार्थक बनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगले एक वर्ष में राजधानी में 2000 आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और पर्यटन विभाग 1-1000 शौचालयों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले 1000 शौचालयों का पूरा धन मुख्यमंत्री विकास कोष से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित आधुनिक शौचालय ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए लगभग 266 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शेष 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि 93 शौचालय ब्लॉक्स दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, 90 उत्तर पश्चिम, 72 पश्चिम क्षेत्र, 51 दक्षिण, 49 दक्षिण पूर्व में, 40 नई दिल्ली, 39 मध्य दिल्ली क्षेत्र में बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य को 14 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के लिए रोहिणी और प्रशांत विहार क्षेत्रों में निर्माणाधीन कॉम्पैक्टर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। श्री वाही ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और निजी कंपनी पर 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में सिख समाज सहित अलग अलग समाजों और वर्गों से आए लोगों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक के दौरान सभी से उनके क्षेत्र और समाज से जुड़े विषयों पर बातचीत कर उनके सुझावों को जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि ये पहल लोगों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्यवाही को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे। नगर निगम ने आज हिंदी दिवस और राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले कवियों और साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि हिंदी देश की विविधताओं को जोड़ने वाली सशक्त कड़ी है, विरासत को एक व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता से संविधान सभा तक हिंदी भाषा ने भारत की चेतना को स्वर दिया है। दिल्ली मेट्रो को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है। नवी मुंबई में आज आयोजित हिंदी दिवस समारोह और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध

0: संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि पर ही अस्थायी रूप से रोक लगा सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। बैंकों को अचानक ग्राहक की बताई गई प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त या ज्ञात साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अंतरण की पहचान करने के लिए एआई आधारित लेनदेन की निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रस्तावित प्रक्रिया में ग्राहकों को किसी लेनदेन का औचित्य साबित करने के लिए 20 कैलेंडर दिवस का समय मिलेगा। इसके लिए उन्हें पहचान का प्रमाण, उसका संदर्भ या ऐसे दस्तावेज देने होंगे जो ये दिखाते हों कि फंड कहां से आया है। इसके बाद बैंकों के पास स्पष्टीकरण और सहायक प्रमाण को देखने के लिए 10 कैलेंडर दिन होंगे। अगर खाता धारक का स्पष्टीकरण ठीक है तो रोक तुरंत हटानी होगी। यदि ग्राहक 20 दिन में जवाब नहीं देता या स्पष्टीकरण से साइबर धोखाधड़ी का संदेह दूर नहीं होता है तो बैंक को NCRP CFRMS पोर्टल के जरिए प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार पुलिस को सौंपना होगा। संबंधित राशि को हमेशा के लिए फ्रीज नहीं रखा जा सकता, उसके बाद जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसी की होगी। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को तेजी से और बेहतर सहायता मिल सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: राजधानी के पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस के DDA ग्राउंड में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणपति महोत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर आधिकारिक उद्घाटन और बप्पा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पंडाल में रक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 2100 श्रद्धालुओं ने एक साथ शंखनाद किया। इस महाशंखनाद के जरिए आयोजन समिति ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है, जिससे पूरा परिसर गणपति बप्पा के जयकारों और दिव्य ऊर्जा से सरोबार हो उठा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की तर्ज पर सजे इस भव्य महोत्सव को देखने और बप्पा के दर्शन करने के लिए पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये महोत्सव 24 सितम्बर तक चलेगा। मेट्रो से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी और सुगम विकल्प है, जहां से पंडाल पैदल दूरी पर स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा।
3: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से कल मैदान पर उतरेगी। वहीं अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। पहले T20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली थी। अभिषेक के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे। वहीं ईशान किशन ने 33 गेंदों में 42 रन का योगदान दिया था। हालांकि संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे और वो केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम पूरे T20 में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में बरकरार रखती है या फिर टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को मौका देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए नवीन सक्सेना।
0: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया, लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
6: ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं, अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम गीत मालिका में। श्रोताओं, आज की ये शाम कुछ विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ हैं दो पावन पर्वों की सुंदर आभा, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी। हरतालिका तीज जो समर्पण, प्रेम और शिव पार्वती के अटूट रिश्ते का उत्सव है, और दूसरी ओर गणेश चतुर्थी जो जीवन में शुभता, बुद्धि, विवेक और मंगल का संदेश लेकर आती है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्पण का नाम है। और जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो तो सबसे पहले स्मरण होता है विघ्नहर्ता श्री गणेश का। तो आइए आज की इस विशेष गीत मालिका में हम कभी शिव पार्वती के प्रेम में रंगेंगे और कभी गणपति की भक्ति में झूमेंगे, और कभी तीज के झूले, मेहंदी और सावन की सुगंध को महसूस करेंगे।

श्रोताओ, ये आवाज़ थी विशाल मिश्रा जी की। और इसी के साथ कहते हैं ना, जहाँ गणपति का नाम होता है वहाँ शुभता अपने आप चली आती है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के भी देवता हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। और अब जरा चलते हैं उस पर्व की ओर जहाँ हरी भरी चूड़ियाँ हैं, हाथों में मेहंदी है, झूले हैं और शिव पार्वती के प्रेम की कहानी है।

श्रोता, ये भजन था हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में। मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक, सावन की फुहार और मन की महक, शिव पार्वती के प्रेम का ये त्योहार हर दिल में जगाए विश्वास अपार। प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसमें केवल पाने की इच्छा नहीं होती।

बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का भाव होता है। और शायद इसीलिए शिव और पार्वती का रिश्ता भारतीय संस्कृति में प्रेम और दाम्पत्य का इतना सुंदर प्रतीक माना जाता है। श्रोताओं, अब बारी आती है गणपति भक्ति की। गणेश चतुर्थी आते ही वातावरण बदल जाता है। घरों में पूजा की तैयारी, फूलों की खुशबू, मोदक की मिठास और चारों ओर गूंजता गणपति बप्पा का नाम। लेकिन गणपति उत्सव का सबसे सुंदर संदेश है मिलजुल कर खुशियां मनाना। तो आइए इसी खुशी को अगले गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं।

श्रोताओ, ये भजन हमने लिया था फिल्म अग्निपथ से और आवाज थी अजय। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। ढोल की थाप, फूलों की सजावट, मोदक की मिठास और हर तरफ एक ही जयकार, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का उत्सव हमें मिलजुल कर खुशियां बांटने और अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का संदेश देता है। तो क्यों ना इसी उत्सव में रंग में रंग जाएं। दोस्तों, त्योहारों की असली खूबसूरती क्या है? नए कपड़े, मेहंदी, मिठाइयां या सजावट? शायद इन सबसे बढ़कर है अपनों का साथ। जब परिवार साथ हो, घर में हंसी हो, मन में श्रद्धा हो, तो साधारण सा दिन भी त्योहार बन जाता है ना?

0: कैसे जाएंगे
1: घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे
0: रास्ते में हम दोनों।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म आपकी कसम से और आवाज़ थी लता और किशोर जी की। दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्ते केवल संयोग से नहीं बनते, उन्हें प्यार, विश्वास और समझ से खूबसूरत बनाया जाता है। शिव पार्वती की कथा हो या हमारे अपने जीवन के रिश्ते, एक दूसरे का सम्मान और साथ ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो चलिए संगीत के माध्यम से इसी खूबसूरत भाव को महसूस करते हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म दुर्गा माँ से, आवाज थी चंद्रानी मुखर्जी और अरुण इंगले जी की। श्रोताओ, अब एक बार फिर करते हैं अपने प्यारे गणपति बप्पा का स्मरण। बप्पा से प्रार्थना है, हर घर में खुशहाली हो, हर मन में उजियाली हो, दूर रहें सारे विघ्न और दुख, हर जीवन में मंगल की लाली हो। गणपति बप्पा हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, सुख और शांति का प्रकाश करें।

श्रोताओं, ये भजन हमने लिया था फिल्म तुमको पूजूं गणेश से और आवाज थी संजय गिरी जी की। श्रोताओं, आज की हमारी गीत मालिका धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन त्योहारों का उत्सव समाप्त कहाँ होता है? गणपति बप्पा का आशीर्वाद और शिव पार्वती का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, यही तो हमारी कामना है। बप्पा के चरणों में हो हर अरमान, शिव पार्वती दें प्रेम का वरदान, तीज की हरियाली छाए जीवन में बार बार, और खुशियों से सजा रहे हर परिवार। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति शिव स्तुति के बिना कैसे हो सकती है?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय

0: कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@airnews हिंदी और पब्लिक पर @airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
6: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with a very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
5: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
6: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
5: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of the global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and the people of India for hosting the summit. We have a report.
7: South Africa, Russia, China, Brazil and United Arab Emirates welcomed India's efforts to strengthen cooperation within the grouping and advance the priorities of the Global South. President of South Africa, Cyril Ramaphosa, praised India's leadership as BRICS chair, saying New Delhi hosted a very successful summit and managed to bring member countries together to adopt the New Delhi Declaration despite doubts over reaching consensus. China's state media and leadership hailed the New Delhi Declaration as a positive step for higher quality cooperation and solidarity among Global South nations. On the declaration, Russia reaffirmed Moscow's dedication to an inclusive, development-oriented partnership with BRICS partner countries. Russian Foreign Ministry reiterated Moscow's commitment to strengthening multilateralism and multipolarity, to upholding international law, including the purposes and principles of the UN Charter in their entirety. Uruguay's Foreign Minister Mario Lubetkin said BRICS New Delhi Declaration addresses the core needs of the Global South and provides a practical framework for tackling shared global challenges. UN Chief Antonio Guterres praised India's BRICS presidency and congratulated Prime Minister Narendra Modi on India's

0: and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्ज़िया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनक़िद हुई 2 रोज़ा सरबराह मीटिंग गुज़श्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इत्तेफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामिये पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क़यादत ने नई दिल्ली आलामिये को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामिये पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्तगी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तज्ज़िया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेज़बानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामिये से मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इत्तफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज़ डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज़ नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में 600 से ज़्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक़वामी कंपनियां और 40 से ज़्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है जिसका इनेकाद

0: का तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी करते हैं। ये प्रोग्राम आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अहम जरिया है, ताकि तआवुन, जिद्दतराजी, मैन्युफैक्चरिंग, सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने को फ़रोग दिया जा सके। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत, खसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैन अलाक़वामी कंपनियों को कारोबारी शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके, टेक्नोलॉजी में ताउन और सप्लाई चेन के रवाबित दरियाफ्त करने का अहम मौका फराहम करेगा। इससे भारत की हैसियत एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत ने नेपाल बिजली अथॉरिटी को इस साल 31 दिसंबर तक रोज़ाना 18 घंटे बिजली बरामद किए जाने की मंजूरी दी है। वजारत बिजली के मुताबिक नेपाल को मुजफ्फरपुर धलकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और तनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली फराहम की जाएगी। हालिया सैलाब से नेपाल के पन बिजली बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसके बायस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत कम और बिजली की इजाफी ज़रूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से नेपाल को मुश्किल हालात में अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के दरमियान देरीना तवानाई तावुन मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत ने मजीद कहा कि भारत नेपाल की मदद के लिए और तवानाई के शोबे में दोतरफा तावुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि भारत की सकाफत और अदब कमल के फूल की मानिंद हैं, जिसकी हर पंखुड़ी मुल्क की मुख्तलिफ इलाकाई जबान की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी ज़ाये हो जाए तो पूरे कमल की खूबसूरती कम हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को मरकजी रोल अदा करना चाहिए, ताहम तमाम इलाकाई जबानों को भी मुनासिब इज़्ज़त, वक़ार और एहतराम दिया जाना चाहिए। जनाब शाह नवी मुंबई में 2 रोज़ा हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे भारत में बहुत सी जबानें और बोलियां हैं, लेकिन भारत का जज्बा और मुल्क की आवाज़ एक रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उनके हमनसब ली हुई ट्रुंग ने आज नई दिल्ली में मुश्तरक तौर पर 19वें भारत वियतनाम मुश्तरक कमीशन मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि नतायज पर मरकूज इस मीटिंग में भारत और वियतनाम के सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक तआवुन को मजबूत बनाने और भारत में तैयार करदा दिफाई साजो सामान की फराहमी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई चेन के उमूर पर भी तामीरी बातचीत की और बाजार तक रसाई को मजीद वसत देने के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की समंदरी मसनूआत, ज़रई मसनूआत और अद्वियात के शोबों में भी तआवुन और बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और जमहूरिया यूरागुए के वजीर खारजा मारियो लुबेटकिन ने भारत और मरकोसुर के दरमियान तरजीही तिजारती समझौते को वसत देने के लिए मुजाकिरात शुरू करने का ऐलान किया। दोनों वजीरों ने मौजूदा समझौते को बाहमी दिलचस्पी के मजीद शोबों तक वसत देने पर इत्तेफाक किया। इसका मकसद भारत और मरकोसुर के दरमियान इकतसादी ताल्लुकात को मजीद वसत देना और दोनों फरीकों के निजी शोबों के लिए ज़्यादा फवायद और नए मौके फराहम करना है। राजस्थान में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में होने वाले शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मजमूई तौर पर बरतरी हासिल कर ली है। आज रियासत के 10,245 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हुई। शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 47 म्यूनिसिपल काउंसिल और 252 म्यूनिसिपैलिटीज़ शामिल हैं। बीजेपी ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भिलवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि अलवर में भी वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस ने वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आजाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर पीओजेके की इंसानी हकूक काउंसिल ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनोती जिलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तश्वीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकिरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है, नीज अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो सकता है। काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकाम और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बामानी और नतीजा खैज मुजाकिरात शुरू करें, सब्र तहमुल का मुजाहरा करें और पुरमन व जमहूरी हल तलाश करें। हुकूमत ने कहा है कि फौज की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। 2025-26 की अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि फौज की इन कोशिशों की वजह से तशद्दुद और मुजाहिरों में कमी आई है और पथराव का खात्मा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला यह त्यौहार दानाई, खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर 10 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में नस्ब करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से आलूदगी कम करते हुए रिवायती अंदाज में गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। जनाब फडणवीस मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में भगवान गणेश की मूर्ति नस्ब करने और उसकी पूजा करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगु कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। तफसील हमारे मुंबई के नामानिगार से।
2: महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। अकीदतमंद भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं और भक्ति गीतों के साथ उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। पुलिस, रेलवेज और बेस्ट की जानिब से भीड़ और ट्रैफिक को मुनज्जम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में घरों और अवामी मकामात पर हजारों गणेश मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान सेहत कैंप, खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और सकाफती तकरीबात के साथ साथ फलाह बहबूद के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने पूरी गुजरात रियासत में आज मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। रियासत के 250 तालुकों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र के चंद जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: गुजरात में आज शदीद बारिश हुई। भावनगर के वल्लभपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं आनंद जिले के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान गुजरात में बारिश के पूरे मौसम के दौरान होने वाली बारिश की 80% बरसात हुई है। बारिश की वजह से रियासत के 35 डैम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब लंबे वक्फे के बाद इस बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमेरिका में मुकीम तजिया कार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना

0: 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 4881 2371 106 2331 4444, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
0: जी।
2: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 2008 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम तीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपने इश्यू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज
0: जी। और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
3: नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण

0: कैसे हो पाएगा, कृपया बताएं।
1: जी डॉक्टर बिष्ट
2: नमस्कार, और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की। ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है, और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
1: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है? सर
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट टू डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
1: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
2: थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल केवल केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत जरूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है, जब उसकी भूख है, उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय

0: बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते
1: जी
0: खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था वो हुआ था, और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियां सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब उनमें, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वजन जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वजन बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
2: मनीष जी को भी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार जी।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
2: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए, और जो बच्चे को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हो। डॉक्टर बिष्ट
0: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने, बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है, जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 साल 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए, क्या है आपका प्रश्न?
3: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध, दही, पनीर और मक्खन घी, ये अब कुछ कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं। पनीर नकली, खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से, तो फिर इसको वापिस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें और क्या क्या ये

0: जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो जहर पे जहर, नीम खतरा करेला नीम तला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
1: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से इस समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
2: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए, कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मुनीश जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी क्या सवाल है आपका?
3: जी जितेंद्र जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके, जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम भाग के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो वो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
4: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए, तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगड़ माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कई बार हम उन्हें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोषा पा खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं, दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गांव में करते थे, रस्सा कस्सी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे, दीज आर गेम्स विच यू कैन डू। एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करना है, आप घर पर बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए ये सब करना, दैट इज ऑल, आंख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आंख मिचोली थी वो बहुत अच्छा खेल था क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आंख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
1: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से राकेश जी। जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
5: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी से, कोटखाई शिमला से। तो मैं, हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल

0: छोटे बच्चे को जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको उसके दांत ना निकल आए, वो च्यू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है। शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने हैं। आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं, शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो निगली जा सकें बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए। शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं। उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको। तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से। जी
1: जी जी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी। संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: इस दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करो, काम के बाद माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक।
1: जी जी जी जी जी आइए, आपने एक अच्छे उदाहरण दिए। और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर डाल दीजिए 0 और फिर नंबर 2331-0481, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044। तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए। हालांकि आहार तो मैं समझता हूं डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही दे
0: हाँ
1: दिया जाता
0: एग्जैक्टली exactly,
1: आहार यदि
0: हाँ
1: कहें, लेकिन
0: माँ का
1: शायद ये
0: दूध
1: पूरक आहार के
0: पूरक,
1: विषय में
0: हाँ तो
1: पूछ
0: वो
1: रहे हैं।
0: 6 महीने के बाद ही देना चाहिए।
1: जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार भी जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
3: मनुष्य का इसमें अन्नप्राशन और
1: जी,
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी,
0: परंपरा
3: परंपरा
0: है
3: थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देता था, उसके लिए अन्नप्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी,
1: जी।
3: और हम
1: अन्नप्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल
1: हमारी
3: माने।
1: संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया
3: हाँ
1: है,
3: हाँ
1: जैसे विवाह संस्कार
3: विवाह
1: है,
3: कर
1: तो उसी तरह अन्नप्राशन सबसे
3: संस्कार।
1: पहला।
0: और एक इसमें बात और है कि अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद
3: खाना
0: खिलाना भी
3: खिलाना
0: है।
3: होता है
0: तो वो
3: जी।
0: एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर्षवर्धन जी ने बात की, कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशियंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
1: जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविजन का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो

0: फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे। तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है ना उसे खाने का टेस्ट
1: टेक्सचर
0: टेक्सचर पता चल रहा है और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता। तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना उनको फूड फैटिज्म भी ज्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादा होती
1: ज्यादा
0: हैं।
1: होती। तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो
0: जी
1: चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा। तो यूनिसेफ ने इस
0: जी
1: बारे में क्या कदम उठाए हैं, बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
0: तो दो चीजें हैं। एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का वजन हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने 2 महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था, वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। और एक एरिया है, क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है, तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सिवियर वेस्टिंग, या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं। हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
0: जैसा मनीषी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है। 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो मस हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
1: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं। पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आप हमें दीजिए इजाजत, मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: थैंक यू।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने यह बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा है कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वीं सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

शाहब खान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गजलें कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम

810 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा का राग मालकोस में गायन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा का राग मालकोस में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।

0: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jayashankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of

ये आकाशवाणी दिल्ली का प्रेस चैनल है। मिडिल वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि की 11:10 हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात का ये खूबसूरत वक्त है ना दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब थोड़ा ठहरने का, कुछ महसूस करने का और दिल की बातें सुनने का समय है। कहते हैं ना, रात जितनी खामोश होती है दिल उतनी ही जोरों से बातें करता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के ये सुंदर सुंदर गीत जो आपकी फरमाइश पर है।

जी हाँ दोस्तों, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो किसी रिश्ते में, जैसे कि शादी के रिश्ते में बन जाते हैं और उसे बहुत प्यार से निभाते हैं, तो यही प्यार असली माना जाता है कि वो हर पल हर वक्त एक दूसरे के साथ है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब पल में आपके साथ होना ना साथी का बहुत ज़रूरी है। अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेटा से। इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, और दिल्ली से नीलम, प्रियाशी, वेदांशी, एसपी सिंह, मयंक, निखिल, मनीष, गीतांजलि, तनिष्का और रणवीर ने।

जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी को पसंद करने लग जाते हैं ना, तो उसके बिना एक पल भी गुजारा नहीं होता। और कुमार सानू की आवाज़ में और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बरसात से। इस गीत की फरमाइश की थी कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसूर, शाइना हसन, नाइजा। पटियाला से मुकेश पत्ता, नीलम, निहारी का हार्दिक वंशपत्ता, और संबलपुर से फागू राम यादव, ज्योति, ओजस्वी ने।

जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते आवाज़ के मोहताज नहीं होते, बस दिल से पुकारो तो दुनिया भी सिमट जाती है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म दुश्मन से। इस गीत की फरमाइश की थी शांति नगर सोनीपत से सिमरन मुखी, अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी ने। साथ ही दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री गुप्ता। और लिखते हैं शंभू दयाल खटक, बिमला देवी और पूजा जी की दीदी प्रिया जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। और गांव जाखोज से हैं ये, और इनकी ये फरमाइश थी कि ये गाना प्ले करें, तो अब हम आपका गाना प्ले करते हैं।

दोस्तों, प्यार में एक डर हमेशा रहता है, कहीं जिसे दिल से चाहा है उसे खो तो नहीं देंगे, क्योंकि मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है ना, उसे खोने का ख्याल भी उतना ही बेचैन कर देता है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म मोहब्बतें से। इस गीत की फरमाइश की थी मंगरूल पीर जिला से योगी राज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन विशाल, कुशल गोपाल, श्याम गोविंद मस्के। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने। और उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, बिलाल अंसारी, जुबेर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म छोटे सरकार से। इस गीत की फरमाइश की थी पहाड़गंज दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नाजिर, साजिद शाहिद ने।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म साजन से। इस गीत की फरमाइश की थी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भव्य निवेश नियति और मधु किरण, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने।

0: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई

0: में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य से जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन में मराठी को प्रमुख स्थान दिया और भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का समृद्ध भंडार तैयार किया, जो हिंदवी स्वराज के दौर में शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने कहा कि दोनों पर्वों का एक ही दिन पड़ना मणिकांचन योग है। कार्यक्रम में हिंदी शब्द संसाधन, टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए तथा वंदे मातरम सहित कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में यह खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts, where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
1: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 12:10 और 7 सेकेंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। इस कार्यक्रम में मैं संजय सावर्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे कलाकार के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें मोहम्मद रफी की दूसरी आवाज कहा जाता था। मुझे यकीन है आप लोगों ने गेस तो जरूर कर लिया होगा, क्योंकि रफी साहब की तुलना किसी से भी करना ये अपने आप में जाहिर करता है कि उस कलाकार की आवाज कितनी अच्छी रही होगी या है। बहरहाल, हम आपको ये बता दें कि वो कलाकार इस वक्त जिंदा हैं, हालांकि वो 77 वर्ष के हो चुके हैं और गायन की दुनिया में सक्रिय नहीं है, लेकिन 70 और 80 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए। उनकी तुलना हमेशा मोहम्मद रफी साहब से की गई और बात यहां तक हो गई कि उनको रिकॉर्डिंग करता देखकर रफी साहब ने भी कहा कि ये मेरी जगह ले सकता है। अब कौन है वो कलाकार, आप सोचिए उनके बारे में, लेकिन हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

साहब गा रहे थे या अनवर साहब? जी हाँ, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, जाहिर है वो रफी साहब तो नहीं है, वो हैं अनवर। जी हाँ, अनवर की आवाज की बनावट, उनकी हरकत जो उनकी आवाज में थी, या फिर यूं कहें कि उनकी आवाज में जो एक थ्रो था, मिठास या जो गहराई थी, वो सब बिल्कुल मोहम्मद रफी साहब की तरह ही थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि एक जगह रिकॉर्डिंग चल रही थी और रफी साहब वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अनवर की गायकी और उनकी आवाज को सुना और वो उससे बेहद प्रभावित हुए। रफी साहब ने अनवर के हुनर की सराहना करते हुए कहा था कि ये लड़का आगे चलकर उनकी जगह ले सकता है। रफी साहब से तुलना अनवर के लिए शुरुआत में एक बड़ा वरदान साबित हुई, जिससे उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन यही समानता आगे चलकर उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हुई, क्योंकि फिल्म दुनिया में उन्हें मोहम्मद रफी का एक विकल्प या क्लोन मान लिया गया और इसकी वजह से उन्हें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, शायद उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कुछ इतने बेहतरीन गाने गाए जो आज भी हम सब की जुबां पर है।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावण।

और बातें हो रही है, जी हां, सुप्रसिद्ध गायक अनवर के बारे में। अनवर हुसैन, जिन्हें हम सिर्फ अनवर के नाम से जानते हैं। जी हां, अनवर का असली नाम था अनवर हुसैन, लेकिन आमतौर पर सब उन्हें अनवर ही बुलाते हैं। उनका जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम था आशिक हुसैन, एक कुशल सितार और हारमोनियम वादक थे। साथ ही साथ संगीतकार गुलाम हैदर के सहायक संगीत निर्देशक भी थे। यानी उन्हें अपने पिता से, यूं कहें, विरासत में ही जो संगीत के गुण थे वो मिल गए थे। अनवर अभिनेत्री आशा सचदेव के भाई हैं, और जो अभिनेता हैं फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, वो उनके सौतेले भाई हैं। ये सभी भाई बहन अब एक साथ नहीं रहते और उनके बीच कोई संबंध भी नहीं था। दरअसल जो अनवर हैं, उनके पिता ने 2 शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था रंजना सचदेव, उनसे उनकी बहन जो थी वो थी आशा सचदेव, और अनवर के जो पिता थे उनकी दूसरी पत्नी जो थी उनसे अरशद वारसी हुए थे। तो ये सब भाई बहन ही थे आपस में, मगर इनके आपस में कभी बनी नहीं। अरशद वारसी आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और वो एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। उनकी फिल्में आती रहती हैं, हम सब देखते हैं, उनके गीत भी सुनते रहते हैं। बहरहाल बातें हो रही हैं अनवर की, तो उनका इन सबसे संबंध था। चलिए अब अनवर ने किस तरह से अपने संगीत करियर की शुरुआत की, उन्हें कब पहले फिल्म में गाने का ब्रेक मिला, किन्होंने उन्हें गाने का पहला मौका दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल सुन रहे हैं इस वक्त आप। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और आज जिस कलाकार के बारे में बात हो रही है वो हैं अनवर साहब। अनवर साहब ने उस्ताद अब्दुल रहमान खान से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली थी, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर के भी गुरु थे।

अनवर ने अलग अलग कॉन्सर्ट में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाने शुरू कर दिए थे, और ऐसे ही एक म्यूजिकल शो के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर कमल राजस्थानी की नज़र अनवर पर पड़ी और उन्होंने अनवर को अपनी फिल्म मेरे गरीब नवाज के लिए गाने का मौका दिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल सुनते हैं अनवर साहब की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अनवर साहब ने फिल्म मेरे गरीब नवाज जो कि 1973 में आई थी, प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने अपना पहला गीत उस फिल्म में गाया और उन्हें ये मौका दिया था म्यूजिक डायरेक्टर कमल

रजस्थानी ने। राजस्थानी साहब के मुताबिक इस फिल्म के गाने कस्मे हम अपनी जान की रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनवर को एक ऐसा सिंगर बताया जो उनके बाद उनकी जगह ले सकता था। सच तो यह है कि उस गाने में उनकी गायकी में काबिलियत तो दिखी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही और गाने भी दर्शकों को उतने ज्यादा पसंद नहीं आए जितने की हो सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इस सफर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बातें हो रही है अनवर साहब की। अनवर साहब के फिल्मी करियर की शुरुआत यूँ तो 1973 में हो गई थी और उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर मेरे गरीब नवाज में अपना पहला गीत भी गा लिया था, लेकिन उनके संघर्ष का दौर खत्म हुआ नहीं। उन्हें असल पहचान 4 साल के बाद यानी 1977 में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था जनता हवलदार। इस फिल्म में उन्होंने कुछ गीत गाए जिसके बोल थे, हमसे का भूल हुई या फिर तेरी आंखों की चाहत। और ये गाने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए थे और कमाल की बात ये रही कि जनता हवलदार फिल्म भी सफल रही और इनके गाए यानी अनवर साहब के गाए गाने भी काफी हिट रहे। अब यहां से अनवर साहब की दुकान चल निकली। कहने का मतलब ये है कि अनवर साहब उसके बाद काफी पसंद किए जाने लगे और इन्हें काम मिलना शुरू हो गया था। अब हम आपको ये भी बता दें कि 1977 में जो फिल्म बनी थी जनता हवलदार, आखिर अनवर साहब को किसने चुना इस फिल्म में गीत गाने के लिए? जी हाँ, अभिनेता महमूद यानी हास्य अभिनेता जो महमूद थे वो इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे और इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे राजेश रोशन, और इन दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि हम अनवर साहब को मौका देंगे और उन्होंने जो फैसला किया अनवर साहब उस पर बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने शानदार तरीके से गीत को निभाया और ये गीत आज भी काफी सुपरहिट है। इसको हम सुनते हैं तो काफी खुशी महसूस होती है और इस फिल्म के बाद अनवर साहब ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और एक से बढ़कर एक हिट गीत उन्होंने गाए।

जी हाँ दोस्तों, सुरों का सफरनामा कार्यक्रम और बातें हो रही हैं अनवर साहब की, लेकिन ये कार्यक्रम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। और अनवर साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने कई संगीत निर्देशकों जैसे कि खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, अनु मलिक, दिलीप सेन, समीर सेन जैसे लोगों के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक के साथ भी कई सारे युगल गीत गाए। 30 साल से अधिक के करियर में अनवर ने फिल्मी गाने, शास्त्रीय गीत, समकालीन गजल, भजन, कव्वाली और सूफी गाने सहित कई तरह के गीत गाए। 31 दिसंबर 1984 को रिलीज हुई फिल्म ये इश्क नहीं आसान में अनवर हुसैन मुख्य पुरुष गायक थे। हालांकि बाद में उनका करियर ढलान पर आ गया और उन्हें काफी सारी आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। बाद में वो सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स चले गए, जहाँ पे उन्होंने लोगों को संगीत सिखाया, लाइव शोज किए, यानी कुल मिलाकर उनकी जिंदगी में कई उतार और चढ़ाव आए। अनवर साहब अब 77 साल के हो चुके हैं और हालांकि वो संगीत की दुनिया में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन अपनी आवाज के जरिए उन्होंने हमारे दिलों पर 2 दशक तक लगभग राज तो किया ही था। साथ ही साथ उनके गाए गीत आज भी हमारे जहन में है। तो चलिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अपने दोस्त संजय सावंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। रात्रि के एक बजने को है, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक

0: युद्ध आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित होगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों ने कहा कि मरम्मत के दौरान पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी और उनके भविष्य के सफर में निरंतर सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with a very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
1: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise for several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded on Sunday. BRICS comprises 11 major emerging economies, representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 1:10 और 8 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता

प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम किए गए। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कार उपलब्ध कराएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा एआई से निर्मित और फर्जी है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। रात्रि के 2 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल और गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई हुई ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे गुलाम अली के स्वर में। अब आइए आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की आवाज में कार्यक्रम की ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में। अब आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजल और गीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:53 और 51 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पल में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5 बजकर 5 मिनट पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5 बजकर 10 मिनट पर।

प्रातः 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। स्वर रंजनी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:30 पर।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 से। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। रामचरितमानस गान में अयोध्या कांड भाग 49 आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 पर। संगीत का ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:10 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:45 पर होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक हम लेकर आएंगे प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी आप सुन सकेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन में 12:10 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:10 पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई

0: दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा की है। ये परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चाएं और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसर तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इन सुधारों से 1033 हेल्पलाइन को कॉल करने वालों की लोकेशन पहचानने, अलग अलग भारतीय भाषाओं में कॉल समझने और सही मदद को ज्यादा तेजी से लोकेशन पर भेजना सुगम होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार इक्काल में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar lauded these

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए

धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता।